फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 जून 2026। इस समय 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजे हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है।

0: उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रैकेट केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन।
2: संसार के सभी धर्मों में निष्काम प्रेम की सराहना की गई है। यीशु ने कहा है, अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करो, अर्थात उन्होंने भी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच के संबंध का आधार प्रेम ही निर्धारित किया है। प्रेम ही वह आधारशिला है जिस पर हम सभ्य और विकसित समाज की कल्पना कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति की वाग्धारा की दिशा निर्धारित करने वाला प्रमुख स्रोत मानव से मानव के स्नेह का भाव ही है। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने प्रेम के 8 स्तर माने हैं। प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। लेकिन शर्त है कि प्रेम निष्काम और निस्वार्थ भाव से किया जाए। अगर कोई मनुष्य किसी से किसी स्वार्थ के वशीभूत हो प्रेम करने का ढोंग करता है तो वह पाप कर्म ही करता है। इसके अलावा प्रेम करने वाले मनुष्य में कई दूसरी अर्हताएं भी वांछित होती है, यथा उसे परम विवेकशील भी होना चाहिए। विवेकहीन प्रेम मोह में परिवर्तित हो जाता है। जो व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है उसके मन में देने का भाव नहीं आ सकता। वह तो अपने मोह में इतना अंधा हो जाता है कि फिर वह सिर्फ पाने की आकांक्षा करने लगता है, चाहे उसके लिए उसे किसी का अहित ही करना पड़े या दूसरे व्यक्तियों का दिल ही दुखाना पड़ जाए। मोह की ऐसी प्रबल धारा है आपकी भी रक्षा नहीं कर सकता। वह पाप होने पर पश्चाताप करता है। उसके मन में बार बार आता है कि वह बहुत बुरा हो गया है, अब ऐसा नहीं करेंगे, किंतु फिर भी वैसा ही करता है। इसी को मोह कहते हैं। इस मोह में पड़े हुए आदमी का अंतःकरण किसी दिन कराह उठता है। हम सब के जीवन में ऐसे क्षण बहुधा आया करते हैं जब अपने पाप अपने को दिखने लगते हैं। ऐसा क्षण बहुत ही शुभ होता है। जीवन में जब मनुष्य को अपने पाप दिखते हैं तो वह घड़ी बड़ी शुभ घड़ी होती है, जब वह अपने बीते हुए जीवन में किए गए पापों पर पश्चाताप करके अपने आने वाले दिनों में उनसे दूर रहने का संकल्प करता है। पास के जीवों से, अपने समाज से और देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति निश्चित ही एक दिन अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप संपूर्ण मानव जाति के आदर का पात्र बनकर सामने आता है। उसका आचरण युगों तक हमारे सामने प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किया जाता है। यीशु मसीह से लेकर माँ टेरेसा तक सभी महान लोगों का जीवन प्रेम और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति ही रहा है। अमीर गरीब, बड़ा छोटा, राजा या रंग, बिना किसी भेदभाव के

0: इन लोगों ने दूसरों को अपनी सेवाएं दी। अपना सारा जीवन उनके उत्थान और उत्कर्ष को समर्पित कर दिया। यही कारण है कि आज हमारा मस्तक उनके सामने झुका रहता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में भक्ति गीत।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम, और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी, विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875, ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन, जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था, और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नोवेलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नोवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नोवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli jail mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad jail mein hua. Vande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नमक जो नोवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें, तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्रनाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा। विषय है नवीन बाग लगाने की तैयारी। वार्ताकार हैं डॉक्टर B.S. राजपूत, वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़।
1: किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि अभी जो है मई और जून का जो है समय चल रहा है, और इस समय जो है किसान भाई उद्यान की फसलों के लिए जो नए बगीचे लगाने चाहते हैं उसकी तैयारी का उपयुक्त समय है। तो जो भी किसान भाई जो है नए बगीचे लगाने चाहते हैं वो इस समय जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से करना है, तो उसमें सबसे पहले जो है जो स्थल का चुनाव आता है कि बगीचे के लिए जो है किस प्रकार की जो है खेत का चयन करें। जब खेत का चयन हो जाता है उसके बाद जो है बात आती है कि जो मिट्टी का नमूना जो है मिट्टी का सैंपल। जब अपन बात करते हैं बगीचे वाल लगाने के लिए जो है मिट्टी का सैंपल कम से कम 3 फीट गहराई से लिया जाता है, क्योंकि जो है पेड़ पौधे उनकी जड़ें 4 से 5 फीट गहराई तक जाती हैं। तो इसके लिए जब मिट्टी का नमूना लेना है अपने को 1 एकड़ जमीन से 6 जगह से मिट्टी के नमूने लेने हैं, 3 फीट गहराई तक जो है खोदना है, और खोदने के बाद उसमें से एक जो गड्ढा है उसमें से आधा जो है किलो मिट्टी प्रति गड्ढे के हिसाब से मिट्टी लेना है अपने को, और पूरे जो है इस मिट्टी को ऐसे एक नीचे से ही नहीं लेना, ऊपर से कुरचते हुए नीचे 3 फीट तक पूरी मिट्टी लेना है जो है, जिससे जो है जो लेयर है जो मिट्टी की सभी लेयर उसमें जो है जो परत है वो उसकी मिट्टी आए, और उस मिट्टी को फिर इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद जो है उसको उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद टोटल जो है ऐसे 3 किलो मिट्टी अगर अपन ने ली है उसमें से आधा किलो मिट्टी को जो है रखेंगे, बाकी मिट्टी को जो है वहीं पे जो है हटा देते हैं, डाल देते हैं जो है। तो इस प्रकार से नमूना लेके और इस नमूने को फिर जो है अपन एक जो कपड़े की थैली है उसमें जो है रख के उसमें किसान की जानकारी, कृषक का नाम है, उसका मोबाइल नंबर है, और इसी के साथ साथ खेत की जो जानकारी है कौन सा खेत है जो है, इससे पहले कौन सी उसमें फसल लगाई गई है, और आने वाले समय में अपन कौन सा बगीचा उसमें लगाना चाहते हैं, ये संपूर्ण जानकारी जो है अपने को जो है उस थैली में जो है मिट्टी के सैंपल के नमूने के साथ डाल देना है, और नमूना फिर आप जहाँ चाहें वहाँ पे जो है उसको मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में भी करा सकते हैं आप, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है जो है कृषि विभाग

0: उसमें भी करा सकते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में भी करा सकते हैं, जहाँ पे आप कराना चाहें वहाँ करा सकते हैं। इसके बाद जो है बात आती है कि जो है अपने को गड्ढे जो है खोदना है, उसका लेआउट जो है बनवाना है। लेआउट किसी भी बगीचे का जो है लेआउट है वो जो है प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि बगीचा अपन जो है एक बार लगाते हैं और वो 50 साल, 60 साल, 30 साल लंबा समय तक चलता है। तो इसकी प्लानिंग जो है किसान भाइयों की बहुत अच्छी जो है कृषि एक्सपर्ट के साथ बैठकर ही जो है उनको बनाना चाहिए, उन्हीं से जो है हेल्प लेना चाहिए। तो अपन अगर सपोज आम का बगीचा लगाना चाहते हैं तो आम के बगीचे को उसमें जो है दो प्रकार की जो है किस्में हैं जो है, एक सघन जो है किस्में हैं जो है, जो ड्वार्फ किस्म बोलते हैं जिसको, जैसे आम्रपाली की अगर बात करेंगे तो उसको अपन जो है ऐसे 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं जो। तो इसमें अपन ऐसे 4 मीटर है, 5 मीटर है, इस हिसाब से जो है गड्ढे से गड्ढे की दूरी ले सकते हैं जो है, और लाइन के लाइन की दूरी। अगर दूसरी वैरायटी लगाना चाहते हैं, अगर आपका जो है लंगड़ा है या और दूसरी वैरायटी है, तो 5 से 7 मीटर की जो है दूरी लेनी पड़ेगी इसमें। तो इस प्रकार से अपन जो है अगर और कोई जो है अमरूद की अगर अपन पौधे लगाना चाहते हैं तो उसमें 6 से 7 मीटर की दूरी जो है लेना है। इस दूरी पर अपने को जो है 3 फिट गहरा और 2 फिट जो है चौड़ा गड्ढा अपने को खोदना है, और उस वो मिट्टी को पूरी को अपन संपूर्ण मिट्टी को बाहर निकाल लेना। आम की बात करें तो अपने रायगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब, जिले के हिसाब से जो है ऐसे अपने यहाँ लंगड़ा है जो है, आम्रपाली है, मल्लिका है जो है, दशहरी है, इस प्रकार की जो किस्में हैं जो है वो अपन लगा सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:35 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 6:40 पर सुनिएगा रामचरितमानस। देश गान का प्रसारण होगा 6:50 पर। चित्रपट संगीत का आनंद ले सकेंगे 7:05 पर। 7:35 पर सुनिएगा प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम छरुखा। गांधी चर्चा का समय होगा 7:45 पर। कार्यक्रम इनसे मिलिए का अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 9:00 से। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जी से विशेष भेंट वार्ता का अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा 10:00 से। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 11:00 से।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का समय होगा शाम 5 बजे। भजन संध्या आप सुन सकेंगे 5:10 पर। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 5:30 पर। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का समय होगा 6:20 पर। लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण अधिक लाभ का आधार। आज की नसीहत में सुनिएगा जैव विविधता के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का उपयोग। साथ ही आप सुन सकेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत का समय होगा 8:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 9:00 से। विविध संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:00। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का समय होगा 10:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर। 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस। कलाकार है मालिनी नाम्बियर। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोह भंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदि देव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है देशगान समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे देशगान समूह स्वर में। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:55 हुए हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार शानू कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में 1942 और लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा जावेद अख्तर ने, तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज में 3 इडियट्स फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है सवानंद किरकिरे ने, तर्ज बनाई है सांतनु मोइत्रा ने।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण लता मंगेशकर की आवाज़ में दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई है उत्तम सिंह ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोनाली ठाकुर की आवाज में बागी फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है कुमार ने, तर्ज बनाई है मीत ब्रॉस ने।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

कार्यक्रम चितपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रेया घोषाल उदय मजुमदार की आवाज में गुरु फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने, तर्ज बनाई है AR रहमान ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा,

दोस्तों आज के कार्यक्रम झरोका में मैं हूं आपकी दोस्त अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने शौक को पूरा करना ही भूल जाते हैं और ना ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहते हैं। दोस्तों लापरवाही आपके स्वास्थ्य में बुरा असर डाल सकती है, खास तौर पर जब हम प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं। कुछ युवा मित्र इसी तनाव के कारण नशा करने लगते हैं, कुछ लोग अपनी मित्र मंडली से नशा करना सीखते हैं। दोस्तों कुछ लोग तो इसी भ्रम में जीते हैं कि नशा करने से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। दोस्तों नशे को कहें ना, जिंदगी को कहें हाँ, ये केवल एक नारा ही नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज ही के दिन 26 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण को प्रेरित करना है। दोस्तों आज के समय में नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है बल्कि पूरे समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। मादक पदार्थ धीरे धीरे व्यक्ति की सोच, स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करते हैं। जब किसी व्यक्ति को इसकी आदत पड़ जाती है तो इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता है। कई बार हम सुनते हैं कि थोड़ा सा नशा करने से क्या होता है, लेकिन सच यह है कि नशे की यह शुरुआत धीरे धीरे आदत में बदल जाती है। यह नशा व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है, उसका आत्मविश्वास घटने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। दोस्तों नशे का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है, आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है, यहाँ तक कि रिश्तों में विश्वास कम हो जाता है। और सबसे बुरा प्रभाव तो ये पड़ता है कि बच्चे भी परेशान होते हैं। कई परिवार केवल इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनमें किसी व्यक्ति को नशे की लत लग जाती है। दोस्तों नशे से फेफड़े की गंभीर बीमारियां, लीवर में क्षति, मस्तिष्क, हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा नशा मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता जैसी गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकता है। दोस्तों परिवार का सहयोग, सही उपचार, परामर्श साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति से नशे की लत पर विजय पाई जा सकती है। स्कूल, कॉलेज, समाज में भी जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। दोस्तों शिक्षकों, अभिभावकों, समाज के जिम्मेदार नागरिकों को युवाओं को सही मार्गदर्शन देना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार, स्वस्थ जीवन शैली और नशे के दुष्प्रभाव की

जानकारी दी जानी चाहिए। जब समाज जागरूक होगा तभी नशे पर प्रभावी नियंत्रण होगा। स्वयं नशे से दूर रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। इसी आशा के साथ अनुमति दीजिए अपने मित्र अनुपमा को और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम छरों का। अब बारी है एक प्यारे से गीत की।

पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से ही बोल रहे हैं।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए गांधी चर्चा।

0: महात्मा गांधी के सत्याग्रह आश्रम में गौ सेवा पर आइए सुनते हैं बापू के विचार।
1: आश्रम का आदर्श तो दूध के बिना गुजर करना है। आश्रम का जैसे यह ख्याल है कि मांस मनुष्य की खुराक नहीं, वैसे ही पशुओं के दूध के संबंध में भी है। एक साल तक बहुत आग्रह के साथ आश्रम में दूध घी के त्याग का पालन करने के बाद यह प्रयोग बंद करना पड़ा। आश्रम में परवरिश पाने वाले बच्चों के शरीर उससे कमजोर होने लगे, बड़े लोग भी दुर्बल होने लगे, इसलिए धीरे धीरे घी और बाद में दूध शुरू हो गया। इनके शुरू होते ही यह निश्चय स्वाभाविक था कि पशु रखे बिना आश्रम का काम नहीं चलेगा। आश्रम गोरक्षा धर्म को मानता है। गोरक्षा शब्द में अभिमान है और आडंबर है। मनुष्य जानवर का रक्षक बनने में असमर्थ है। जो खुद रक्षा चाहता है वह दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता। जीव मात्र का रक्षक एक परमेश्वर ही है। ऐसी मान्यता होने के कारण आश्रम ने गोरक्षा के बजाय गो सेवा शब्द का प्रयोग पसंद किया, लेकिन खुद दूध घी छोड़कर सिर्फ परमार्थ की दृष्टि से गो सेवा करने की आश्रम की इच्छा सफल ना हुई, इसलिए ढोर पाले गए। शुरू शुरू में यह स्पष्ट नहीं था कि सिर्फ गाय बैल ही रखना धर्म है, इसलिए गाय बैल और भैंसे रखी गईं। पर दिनों दिन यह साफ होता गया कि आज तो गो सेवा करने से ही सब मनुष्यतर प्राणियों की सेवा हो जाती है। गो सेवा तो मनुष्य के लिए मार्गदर्शक भर है, इसके आगे जाने के उसके पास साधन नहीं है। गाय की नस्ल सुधारना, अलग अलग खुराक देकर उसका दूध बढ़ाने और सुधारने की संभावनाओं की खोज करना, दूध को अधिक काल तक टिकाए रखने की कला सीखना, उसमें से आसानी से मक्खन निकालना, बछड़ों को कम से कम कष्ट देकर खस्सी करना आदि बातों पर ध्यान दिया जाता है। फिलहाल तो यह सब प्रयोग के रूप में चल रहा है, मगर आश्रम की मान्यता यह है कि गाय का उपयोग पूरा हो और दया के साथ हो तो गाय भार रूप बन ही नहीं सकती। आज शायद बहुतों को पता ना हो कि गाय महंगी पड़ती है। वह महंगी पड़ती है इसलिए उसकी हत्या होगी ही। मनुष्य इतना परोपकारी नहीं होता कि खुद मरकर गाय को बचाए, यानी गाय को अपना ही भक्षक बनने दे। आज के हिसाब के अनुसार पशुओं की संख्या इतनी है कि उन्हें अच्छी तरह पालें तो मनुष्य को अपने ही लिए काफी खुराक ना मिले। यह बात सही नहीं है, ऐसा साबित करने के लिए यह बताना चाहिए कि गाय बैल को ज्यादा अच्छी तरह पालने से उनकी उत्पादक शक्ति बढ़ सकती है। आश्रम की राय है कि यह साबित करके बताया जा सकता है। आश्रम की मान्यता यह है कि जितनी गौशालाएं और पिंजरा पोल हैं उनका धार्मिक और शास्त्रीय उपयोग हो। धनी लोग अपने यहाँ गौशाला चलाएं और गाय के दूध घी के उपयोग का ही आग्रह रखें तथा गाय के दूध का व्यापार निषिद्ध मानकर सार्वजनिक गौशालाएं इस तरह चलाएं कि उनका आय व्यय बराबर रहे, तो जल्दी ही गाय की रक्षा हो सकती है। अभी तो आश्रम का उद्देश्य छोटा ही है। आश्रम में आदर्श गौशाला चलाना, गाय बैल का विकास करना, मरने पर उनके हर

अंग का उपयोग करके यह साबित करना कि उनका खर्च सिर पर नहीं पड़ता, गौशाला चलाते हुए गौसेवक तैयार करना और तैयार होने पर उनकी सेवाओं का उपयोग करना, यह काम इस समय हो रहा है। इसमें रुकावटें बहुत आती हैं, मगर पूरा भरोसा है कि इसमें सफलता मिलेगी।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

9 बजे से छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र यादव से विशेष भेंट वार्ता का अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा सुबह 10 बजे से। फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा सुबह 11 बजे से।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का समय होगा शाम 5 बजे। भजन संध्या आप सुन सकेंगे 5:10 पर। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 5:30 पर। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का समय होगा 6:20 पर। लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण अधिक लाभ का आधार। आज की नसीहत में सुनिएगा जैव विविधता के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का उपयोग। आज का टिप कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे रात्रि 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात 9 बजे से। विविध संगीत का समय होगा रात 10 बजे। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का समय होगा 10:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजे हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र

0: तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया।

0: ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना।

0: Ahmedabad stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसमें आइए सुनते हैं छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार श्री सुनील सोनी से रमाशंकर की बातचीत।

0: श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारे छत्तीसगढ़ की माटी बहुत ही उपजाऊ है। इस माटी पे हम धन धान्य जैसे कई चीजों को उपजता देखते हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, साथ ही हम इसे लोकगीत का भी एक बहुत मधुर केंद्र मानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से कई ऐसे कलाकारों ने जन्म लिया है जिनकी ख्याति आज छत्तीसगढ़ से बाहर भी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और जब हम हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों, गीत परंपरा, त्योहारों की बात करते हैं तो एक मधुरता हमारे छत्तीसगढ़ के गीतों में मिलती है। और श्रोताओं, जब हम बात करते हैं गीतों की, संगीत निर्देशन की, तो हमें आदत है ऐसे गीतों को सुनने की जिससे कि मन मुग्ध हो जाए। ऐसे ही मन मुग्ध होने वाली आवाज हमारे छत्तीसगढ़ में है और आज हमारे साथ स्टूडियो में भी है। सुनील सोनी जी का नाम आप सबने सुना है और इनके गीत आप गुनगुनाते भी हैं, हम भी गुनगुनाते हैं। कई त्योहारों, उत्सवों और सिनेमा तक में इनके गीतों की गूंज हमेशा सुनाई देती है। आज सुनील सोनी जी हमारे साथ हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में। तो सबसे पहले सुनील जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आप सभी ला जय जोहार, नमस्कार और स्नेही जन सभी जन ला मोर प्रणाम है
0: जी। तो सुनील जी, आज कार्यक्रम में आप आए हैं तो हम आपसे बातें करेंगे, पर उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि जिस तरह आपके मधुर गीतों को सुनने की हमारी आदत है, उस आदत को हम बरकरार रखें और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके एक मधुर गीत से करें।

0: ए बोरे पुरहिन खुल के बिराजे तोला झुमका हाय हाय ए बोरे पुरहिन खुल के बिराजे तोला झुमका तोरे ककनी करन फूल झूले ना तोरे ककनी करन फूल झूले ना मोर पगली खुल के बिराजे तोला झुमका ए बोरे पुरहिन खुल के बिराजे तोला झुमका।
1: बहुत ही मधुर गीत और आपकी आवाज, वो आवाज जो हम कई सालों से सुन रहे हैं, अनवरत सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। तो सुनील सोनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सबसे पहले कार्यक्रम में आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ।
0: बाल मंदिर से मैं गीत गात हूँ और हिंदी फिल्म के जतका वो समय के जो बहुत प्रसिद्ध गीत रहे किशोर साहब के, रफी साहब के, लता मंगेशकर जी के, ये सब गीत से मोर शुरुआत हो है। और अगर विधिवत शास्त्रीय संगीत के शिक्षा ले हूं तो मैं 1984 में मोर प्रथम गुरु पंडित जागेश्वर प्रसाद देवांगन जी से मैं हारमोनियम वादन और शास्त्रीय संगीत के प्रवेश का प्रथम में भातखंडे महाविद्यालय मीरज से मोर पहला परीक्षा हुई और वहां से मोर संगीत के जो सफर है वो आज 2026 में आप सबके आशीर्वाद से, श्रोताजन, स्नेहीजन और गुरुजन और माता पिता के आशीर्वाद से आज भी अनवरत चलत है, जारी है, जिला आप मन बहुत प्यार देते हो।
1: जी जी। तो सुनील जी, हम जैसा जानते हैं कि बचपन से आपने गाने की ओर

0: अपना रुख किया और आपकी रुचि थी गानों में, तो आप बताइए कि किन मंचों पे आपने शुरुआत की, जहाँ से जो आप मानते हैं कि एक मील का पत्थर रहा हो आपके बचपन में, जहाँ से आपको गायकी का जो एक सुरूर आपको जो लगा कि मुझे इस ओर जाना चाहिए।
1: मैं छत्तीसगढ़ी मंच में सोनहा अभियान से प्रारंभ कर रहे हूँ। दाऊ महासिंह चंद्राकर जी की एक टीम रही से सोनहा अभियान, और एक टीम रही से पिनका पार से दाऊ रामचंद देशमुख जी के, और चंदेनी गोंदा में भी कुछ वर्ष मैं गुरुदेव हमारे जो खुमान साहु जी जो जिला मैं गुरुदेव मानता हूँ
0: जी जी,
1: तो उनकर सानिध्य में भी बहुत सारा संगीत के बारीकी जाने ला मिलिस
0: जी जी।
1: और शास्त्रीय संगीत की विधा में मैं पंडित जागेश्वर प्रसाद देवांगन जिनको मैं अपना पहला गुरु मानता हूँ, वो मेरे प्रथम गुरु रहे हैं, और वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा शास्त्रीय संगीत की प्रारंभ हुई। उसके बाद मैं सुगम संगीत और गीत भजन में और लगातार जो पब्लिक जिला पसंद करते वो सब गीत मन लेकर के लगातार बने रहे हूँ। हाँ, एल्बम के माध्यम से 1990 में मोर पहली एल्बम आ रही से, और वहां से मुकुंद कौशल जी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के माने हुए कवि है, उनकर सानिध्य में हमें गुरुदेव ही माने रहे हूँ ला, जो आज तो हमारे बीच नहीं, लेकिन बहुत अकन गीत में उखर मन के एल्बम में गाए हुए हूँ
0: जी जी। तो सुनील जी, वो बचपन के कोई गीत है वो आपके जिससे आपको लगता हो कि इन गीतों को आज भी मैं गुनगुना दूं?
1: जय

0: बमलेश्वरी मैया के एक भजन रही से
1: जी।
0: जिला लगातार मंदिर में मंदिर प्रांगण में वहाँ के शुरुआत रही से
1: जी।
0: और आप सबके बीच मतलब बहुत सारा आशीर्वाद मिलिश
1: जी जी। तो सुनील जी, जब हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की परंपराओं की, गीतों की, यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में आपको अगर हम गाने को कहा जाए तो आप किस ओर सबसे ज्यादा आपका रुझान होगा?
0: मोर पसंदीदा छत्तीसगढ़ी जो बोली भाखा है ओखर सबसे प्रिय मुला कर्मा अंग बहुत भात है
1: जी।
0: और कर्मा में मोर गीत मन अपन छत्तीसगढ़ के माटी एक कार्यक्रम रही से प्रहलाद सिंह कश्यप के परपोड़ी से,
1: अच्छा
0: उनकर सानिध्य में मोर एक गीत रही से जिला मैं मंच में गाऊ और मैं अपन पिताजी संग जुड़े रहा और उस समय मैं कोरस भी करूँ गाना
1: जी।
0: और वो गीत रही से तय है।

0: के मोला दादा माता डारे आहुच कह के गोरी काबर मारे गोरी करे जामा लगे बान काबर मारे।
1: जी जी बहुत खूबसूरत गीत है और आपकी आवाज ने बोल को और मधुर बना दिया है।
2: बस पिताजी लगातार मेरे संगीत के लिए लगे रहे हमेशा, गुरुजनों के पास सीखो, अपने से बड़ों से संगीत की बारीकियां जानो और लगातार अभ्यास करो। तो ये मेरे गुरु और मेरे माता पिता जो लगातार मेरे ऊपर आशीर्वाद दिए, ये उसी का परिणाम है जो मैं आप सभी को अपने संगीत से जोड़ पा रहा हूँ, अपने स्वरों को ईमानदारी से लगा पा रहा हूँ। कहीं कुछ ऐसे प्रभु इच्छा है जो आज तक आप सबके बीच बना हुआ।
1: जी जी जी सुनील जी, तो सुनील जी कार्यक्रम में हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और आपसे चाहेंगे कि आपकी पसंद का कोई एक हिंदी गीत हम सुने।

जी। तो आइए श्रोता कार्यक्रम में सुनते हैं सुनील जी की पसंद का ये गीत।

0: इनसे मिले कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे सुनील सोनी जी से, जो छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं, संगीत निर्देशन में भी इनका काफी योगदान है। तो सुनील सोनी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कार्यक्रम में अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि गायन की ओर से हम थोड़ा सा संगीत निर्देशन की तरफ चलते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संगीत निर्देशन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में अभी आपकी कौन कौन से जो है कार्य किए गए हैं।
1: संगीत निर्देशन में सबसे पहला मेरा जो फिल्म था वो माया, 2005 में हम इन गीतों को रिकॉर्ड किए थे
0: जी।
1: काने मा बाली ओ गोरा गोरा गाल, गोरा गोरा गाल, ये ले

0: ये बहुत ही प्रचलित हुआ गीत और लोगों को बहुत पसंद आई। इसमें के सभी गाने ये पीरित वाली रानी पिया दे मया पानी लगे है मुरबानी तोरे चटन मा एती तेती मो बे मतलब के वो ते बाराला बजा डारेना
1: जी। हाँ। तो सुनील जी, जब गायन की बात होती है, जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आपको कई बार अवसर मिले हैं, तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों से आपको अवसर कब से मिलने शुरू हुए और अभी तक उन फिल्मों के बारे में आप बताएं जहां आपकी आवाज हम जिन फिल्मों में सुन सकते हैं।
0: जी, सन 2002 में मेरी पहली फिल्म की रिकॉर्डिंग हुई, झन भूलो माँ बापला,
1: जी
0: सतीश जैन जी की फिल्म, और वहां से प्रारंभ करते हुए आज 2026 में 100 से अधिक फिल्में हैं जिनमें मेरा संगीत और गायन है। और एल्बम अगर हम देखें तो 5000 से ऊपर एल्बमों में मेरे गीत संगीत हैं जिनको दर्शकों का प्यार मिल रहा है, वो लगातार सुन रहे हैं अपने कार में, अपने घर में।
1: जी।
0: और जब मेरी छोटी छोटी बहनें जब इन गीतों को सुनती हैं सुबह सुबह एक पारिवारिक वातावरण में, जब वो लोग अपने मेरे गीतों को बजाते हैं, तो मुझे हार्दिक खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है।
1: जी जी।
0: और छत्तीसगढ़ी में दर्शक मल्ला गोठियाना चाहो कि जैसे हमार बोली भाखा, हमार खान पान, हमार रहन सहन, हमार पहरावा ओढ़ावा, हमार रिश्ते नाता, हर चीज में एक आरूपन है, एक अमृतमय समा है, तो वही अमृतमय हमार गीत संगीत में भी है।
1: जी जी।
0: और हमर कर्मा ददरिया चन्नैनी पंडवानी, हमर लोक पुरोधा कलाकार मन के आशीर्वाद से, जेखर माध्यम से मुला सीखे ला मिली, गुने ला मिली सुखर मन के कला ला, तो ये सब मोर आदर्श रहे हैं और ये सब गुरुजन के ही आशीर्वाद से मोर संगीत ला मैं निभा पात हूँ।
1: जी, तो ये बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। तो सुनील जी, एक फिल्म थी भूलन द मेज, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहा गया, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में भी इस फिल्म की चर्चा रही, तो इसमें भी आपके गाए कुछ गीत हैं।
0: मेरे संगीत भी हैं इसमें, जिसमें हम लोगों ने शीर्षक गीत को कैलाश खेर जी से गवाया। ये मनोज वर्मा जी के निर्देशन में प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसको 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: जी।
0: और इसमें मीर अली साहब का एक गीत है।
1: अच्छा।

0: जी जी बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गीत। तो इसके बारे में आप, जैसे हम भूलन द मेज फिल्म की बात हो रही है, तो जब इस फिल्म को वहाँ 67वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों के लिए जब वहाँ पे इसका नाम आया फिल्म का, छत्तीसगढ़ के लिए काफी एक गर्व का विषय था। तो इस तरह हम देखें तो आपकी जो फिल्में हैं जिसमें भूलन द मेज है, चल हट कोनो देख ली, इश्क मरीज खरे, तो ऐसी ऐसी कितनी फिल्में हैं जो अभी जिसमें आपकी आवाज हम सुन सकते हैं?
1: 100 से अधिक है
0: जी।
1: और

0: 100 से अधिक फिल्मों में मेरा संगीत है
1: जी।
0: और यहाँ की लगभग 200 से अधिक फिल्मों में मेरा गायन है
1: जी।
0: जी अभी लेटेस्ट में मैं आरू भौजी, महो दिलवाला तो हूँ दिलवाली, इसके पहले मेरी फिल्म आई थी मोर छैया भुइया पार्ट टू, मोर छैया भुइया पार्ट थ्री, सुकुआ
1: जी,
0: और अभी झनबुलो माँ बाप भाग दो में काम चल रहा है
1: जी।
0: और एक हमारी जो फिल्म है जो छत्तीसगढ़ में टॉप बिजनेस की, जिसको हम कह सकते हैं ले शुरू हो गए माया की कहानी।
1: अच्छा जी जी,
0: तो उसके भी गीत संगीत को बहुत प्रतिसाद मिला
1: जी जी। तो सुनी सुनी जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ आप किस तरह देखते हैं कि जो हमारा संगीत का और फिल्म निर्देशन और संगीत निर्देशन जो क्षेत्र है वो कितना अभी जो है अनुकूल है?
0: यहाँ समृद्ध है हमार कला
1: जी।
0: यहाँ के माटी में एक ऐसे धुन है जो बिहनिया से लेके रात्रि तक एक उत्सव के माहौल बनते हैं यहाँ के संगीत में, यहाँ के वाद्य मन में
1: जी।
0: और यहाँ की जो सरल स्वभाव है लोगन में वो तो मैं कितो देवी देवता है हमार
1: जी।
0: जो कहिला समूचा विश्व में हमार यहाँ का हमार जो जनता जनार्दन है ये हमारे देवी देवता के बराबर है, देवता धामी के बराबर है, जैन मन हमल्ला सुनत है और ये आशीर्वाद सदा बने रहे कि हमारे छत्तीसगढ़ के गीत संगीत ला बहुत माया देते हैं
1: जी।
0: और आज विश्व में भी हमारे छत्तीसगढ़ के महान गायिका तीजन बाई जी के पंडवानी आज समूचा विश्व में बगरे है और उखर मन के ख्याति जो जनता सराहना मिले है तो ये बहुत बड़े बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कला ला नवा पहचान और बहुत सारा प्यार मिले
1: जी जी। तो सुनील सोनी जी, जैसे कि हमें ज्ञात है किशोर साहू राज्य अलंकरण सम्मान और फिल्म हांडा के लिए बेस्ट सॉन्ग ऑफ द छत्तीसगढ़ पुरस्कार भी आपको प्रदान किया गया था, इसके बारे में बताएं।
0: सबसे पहले तो संगीतकार के मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ जो ये फिल्म से मुला जोड़ी ओमी स्टाइलो के गीत और संगीत रही से
1: जी।
0: एक गोरीबो गोरीबो गोरीबो गोरीबो माया मुला तोर से भारी लागे लागे लागे लागे जब ले तला देखो रे मैं हो गये कोट नकस जटी जटी मैं देखो रे तोर दिखे थोथना बस तोर दिखे थोथना बस। ये गीत बहुत ही इंटरटेनिंग है और एमा बहुत सारा मंच में जब एला हमन प्रस्तुत करथन तो एमा जो आनंद मिलते और दर्शक मन के प्यार मिलते ये बहुत ही मतलब यादगार बना देते
1: जी।
0: और रही सवाल के राज्य सम्मान, राज्य अलंकरण पुरस्कार, किशोर साहू सम्मान जो मुला प्राप्त हुई उपराष्ट्रपति से और यहाँ के हमार मुख्यमंत्री साहब के हाथ से, तो ये जो ये मुरली बहुत यादगार पल जेल में भूल नहीं सको और आज मैं सब हमार गुरुजन माता पिता और स्नेहीजन श्रोता जन मन के हृदय से आभारी हूँ कि ये जो आशीर्वाद है ये मोर कला पे बने रहे ताकि मैं अंतिम सांस तक संगीत ला निभात रहूं और पूरा हमार जो पारिवारिक जो हमारे रिश्ता नाता है छत्तीसगढ़ के जनता मन से वो सदा बने रहे, ओकर मन में नवा नवा गीत संगीत सृजन करके लात रहो
1: जी। जी सुनील जी, जब हम कभी हमारे छत्तीसगढ़ की जो पर्व त्योहारों का समय आता है तो उस समय भी आपके गीतों की धूम होती है, कभी हम सुनते हैं जैसे चलो चलो गिरोदपुरी धाम
0: जी।
1: और आवाज जो है इन गीतों में भी सुनने को मिलता है, तो हम चाहेंगे आपसे कि कुछ इस तरह के गीत हमें
0: अभी मोर हाल ही में पिछले वर्ष एक फिल्म आ रही से जेमा मोर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के एक पंथी जिला बहुत माया दुलार मिलिस
1: जी।
0: सत्य

0: और बाबूजी रामेश्वर वैष्णव जी, बद्री विशाल जी और छत्तीसगढ़ के पुरोधा खुमार लाल साव जी,
1: जी
0: दाऊ महासिंह चंद्राकर जी, दाऊ रामचंद देशमुख जी, और ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के सब पुरोधा कलाकार मन है, खर मन के जो अपन अभ्यास रही से, उखर मन के मेहनत रही से, ओ मल्ला हमन नवा पीढ़ी ला बिल्कुल जरूरी है कि हमार नवा पीढ़ी मनोला सुने और अपन जीवन में उखर मन के प्रेरणा मान के अपन संगीत के अभ्यास में उमल्ला लगातार गुने और उखर मन के कार्यशैली भी पकड़े, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से हमार नवा पीढ़ी जुड़े। जैसे मोर एक गीत है जिला मैं प्रेमचंद्राकर जी के माध्यम से फिल्म में गा रहे हूँ, जिला अपन बहुत प्यार दे,

0: इन गीतों में एक ऐसी मिठास है जो सीधा कानों को भेदते हुए हृदय तक प्रवेश करती है। तो सुनिए जी, हर किसी के जीवन में कोई एक ऐसा क्षण होता है जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो पल वो क्षण आपके जीवन में कोई ऐसा आया हो।
1: जी, 2004 में एक फिल्म आई थी भकला
0: जी,
1: जिनके गीतों को संगीत दिया था कल्याण सेन जी ने
0: जी,
1: और उसके जो निर्देशक उसके प्रोड्यूसर रायसिंह ढिकोला जी,
0: जी
1: जिसको बाद में रिलीज किया दिनेश पटेल जी ने, उस फिल्म में मैं अनुराधा पौडवाल जी के साथ मदन शर्मा जी का एक गीत गाया था जिसको बहुत प्यार मिला, और उस फिल्म में लता मंगेशकर जी जो हमारे महान गायिका हैं, जिनको मैं भगवान की तरह पूजता हूँ, माँ सरस्वती कहता हूँ, और तब से लेकर आज तक मेरा कोई डीपी भी चेंज नहीं हुआ
0: जी, जी।
1: मेरे व्हाट्सएप का डीपी भी आज वही है, माँ के साथ मेरा जो फोटो है उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। वो पल मैं भूल नहीं पाऊंगा जब मैं स्वरलता स्टूडियो में हमारे विश्व की महान गायिका लता मंगेशकर जी का मुझे आशीर्वाद मिला, और पूरा दिन भर हमने उनके साथ गुजारा और बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं घर में
0: जी।
1: लेकिन ये पल मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा, ये मेरे लिए धन्य हो गए, बहुत कीमती हैं
0: जी।
1: आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो मुझे बहुत याद आते हैं, और मैं अपने जीवन में उनको बहुत गुरु मानता हूँ, भगवान की तरह पूजता हूँ
0: जी। बहुत अच्छी बात है, और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व आपने किया और लता मंगेशकर जी से आपकी मुलाकात हुई, ये वाकई में एक सौभाग्य की बात है
1: जी।
0: जी जी, तो सुनी जी, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं से अपने अनुभव अपनी बातें साझा की, और बेशक ही हमारे श्रोता गीतों को सुनते रहे हैं सुनते रहेंगे, और आपके बारे में जो जानकारी आज उन्हें मालूम हुई है, आपके अनुभव जो उन्हें पता चल रहे हैं, ये बहुत खास रहेंगे। सुनील जी, आप आज आकाशवाणी आए और हमसे रूबरू हुए, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी से जाते जाते मैं दो पंक्ति हमारे श्रोताजन को कहना चाहूंगा, लुक

0: श्री रमाशंकर की बातचीत मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 9 बजे हैं। अविविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: सिंघम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अकेली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गुरुशब्द सिंह और चयनिका गर्ग की आवाजों में। बोल गुरुशब्द सिंह के थे, संगीत भी इन्हीं का था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है।

0: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

थप्पड़ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। राघव चैतन्य की आवाज में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। ये एक ऐसी बेड़ी है जो व्यक्ति की उड़ान और उसके सपनों को छीन लेती है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग मस्ती या टेंशन दूर करने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कब एक जानलेवा लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज का दिन उन लाखों परिवारों के नाम है जिन्होंने अपने को इस लत के कारण खोया है। लेकिन आज का दिन सिर्फ गम मनाने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है, खुद को बचाने का और अपने परिवार को सचेत रखने का संकल्प। जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं उनका हाथ थामकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का दिन भी है। दोस्तों नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध लगे या अगर आपको लगता है कि कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा है तो खामोश न रहें, मदद के लिए आगे आएं। नशा नाश की जड़ है और हमें मिलकर इस जड़ को काटना है। तो चलिए आज के इस दिन हम वादा करते हैं कि हम न सिर्फ नशा मुक्त भारत का सपना देखेंगे बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी कोशिश भी करेंगे। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, इसे किसी नशे की भेंट न चढ़ाएं, अपने हुनर को पहचानें, अपने सपनों को जिएं और नशे को कहें ना। आज 26 जून है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को स्थापित किया गया था आज के दिन नशा मुक्ति के लिए। और इसका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिए शिल्पा राव की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, अमित त्रिवेदी का संगीत है।

0: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना था, शिल्पा राव की आवाज, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम।

शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

एनिमल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गरिमा के बोल थे श्रेयस पुराणिक का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।

0: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
1: वो तो

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की

तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 वर्ष की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की

मूवी फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलैयाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

और फिर आई फिल्म शमिताब, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहां तक कि अपने भाई को भी, इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

0: अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैया राजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैया राजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैया राजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैया राजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैया राजा और मणिरत्नम का साथ सन 1991 में आई फिल्म।
1: और अब पेश है आपके आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की। प्रदेश में परिवहन विभाग ने

नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। एल्डरमैन जनता और निकाय के बीच सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLDT लगाना अनिवार्य किया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को 15 दिन के भीतर बिना VLTD बसों वाली उपकरणों लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला के अंतर्गत लकी ड्रॉ के विजेता हितग्राहियों को आज रायपुर में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और आवास मंत्री OP चौधरी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मंडल द्वारा आयोजित नवीन लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता रचनाकार को 2.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने कहा है कि दाखिले से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता, राजपत्र में प्रकाशन, संबद्धता और पाठ्यक्रम की मंजूरी की जांच जरूर कर लें। आयोग ने बताया कि निजी विश्वविद्यालय अपने कैंपस के बाहर अन्य संस्थानों को संबद्धता नहीं दे सकते। PhD में प्रवेश लेने वाले छात्र UGC के नियमों और शोध निर्देशक की योग्यता की भी पुष्टि करें। आयोग ने छात्रों से अपील की है कि भ्रामक विज्ञापनों से बचें और प्रवेश से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। राज्य शासन ने डोंगरगांव नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार डोंगरगांव नगर पंचायत की सीमाएं ही डोंगरगांव नगर पालिका की सीमाएं होंगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा है कि नगर पालिका बनने के बाद डोंगरगांव में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता जैसी विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के लिए विकास को गति मिलेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 10:25 तक प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित कई शहरों में ताजिए निकाले जाएंगे। रायपुर के करबला में भी हजरत हुसैन की बड़ी कुर्बानी को याद करते हुए मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन आज रात किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। अगला कार्यक्रम पुष्पलों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता। ये प्रादेशिक समाचार एकांश की आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति है।

श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ का स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों की दशा के साथ ही शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अनेक पहल कर रहा है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने

0: हाल ही में संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर अनेक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इनमें से एक दिशा निर्देश यह है कि अगले साल से स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा और विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक गणवेश भी 1 अप्रैल को ही दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। श्रोताओं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव। मंत्री जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मंत्री जी, जो नया शिक्षा सत्र है वो 16 जून से शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में, तो अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा से जुड़े, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, आपके विभाग की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
1: अभी हम लोगों ने कहा है कि जो बच्चा 16 जून से हम जो प्रारंभ किए हैं और जो कंटिन्यू अब्सेंट हैं, जो बच्चे अनुपस्थित हैं, प्रधान पाठक या संस्था प्रमुख उसमें विशेष फोकस करें। 30 जून तक देखें कि कौन बच्चा सबसे ज्यादा अब्सेंट है, कौन बच्चा जो बिल्कुल नहीं आया हो, उन बच्चे को मार करें और हर हाल में हमको 30 जुलाई के पहले उस सारे बच्चों का फिर से एडमिशन कराना है। उसके लिए कल हम बैठक किए और बैठक में सारे जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उन स्कूलों का आप चयन करें, चिन्हित करें, जहाँ ड्रॉप आउट बच्चे कितने हैं, कौन बच्चे जो लगातार अनुपस्थित हैं उनको चिन्हित करें और जाके वहाँ बात करें, उनके पालकों से बात करें, बच्चों से बात करें और वापस उनको स्कूल की ओर लाए, ऐसा हम तैयारी कर रहे हैं।
0: मंत्री जी, आपने जिला शिक्षा अधिकारियों की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक ली है और उसमें काफी अहम दिशा निर्देश भी आपने उनको दिए हैं कि अगला शिक्षा सत्र जो है 2027-28 वाला, वो 1 अप्रैल से शुरू हो, और काफी इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं।
1: देखिए, अभी तक हम लोग देखते थे कि सारे जो निजी विद्यालय हैं वो 1 अप्रैल से नया सेशन चालू करते हैं और हम लोग का भी पिछले बार का जो एग्जाम है उसी पैटर्न में हुआ था, उसी तैयारी के आधार पे हम लोगों ने फरवरी में एग्जाम लिया था। और चूंकि एक 10वीं बोर्ड का एक पेपर लीक होने के कारण फिर से एग्जाम लेना पड़ा, जिसके कारण हम थोड़ा पीछे हुए जी। हमारा टारगेट ये है 15 जून से स्कूल खुले। क्या होता है, 15 जून को जब स्कूल खुलता है जी, तो प्रवेश आते आते वो जुलाई चल देता है जी। और वो वास्तव में जो पढ़ाई रनअप होने की स्थिति में 15 जुलाई तक आ जाता है, तो 1-2 महीना हम ऐसे पीछे हो गए जाते हैं। 1 अप्रैल से स्कूल खुलेगा तो बच्चा मानसिक रूप तैयार होगा, जितने उसके एडमिशन संबंधित और जितनी जो चीज है, जैसे हम यूनिफॉर्म देते हैं, साइकिल देते हैं, पुस्तक देते हैं, तो ये सब तैयारी हम 1 अप्रैल से करेंगे जी। तो वो अप्रैल में एडमिशन संसाधन और उपलब्धता सब होने के बाद वो पढ़ाई का एक सेटअप प्रारंभ हो जाएगा जी। 16 जून को जब बच्चा आएगा तो जो पुराना सेटअप है उसमें सीधा पहले दिन से वो दौड़ना चालू होगा जी। तो जो 1 अप्रैल का हमको 15 दिन पूरी पढ़ाई के लिए मिलेगा और 16 जून से जो हम 15 जुलाई तक जो एडमिशन और जो काम में जो व्यस्त रहते हैं वो पूरा 1 महीना पूरी तरह पढ़ाई में रहेगा। तो इस साल हम चूंकि अभी सेशन प्रारंभ हुआ है जी, हमने बैठक में कहा है कि कोर्स, सारे कोर्स हमको अनिवार्य रूप से सबको दिसंबर तक कंप्लीट करना है, जनवरी में रिविजन करना है, फरवरी में एग्जाम करना है जी। और फरवरी में एग्जाम होगा तो हम हर हाल में 15 मार्च तक रिजल्ट घोषित कर देंगे। अभी से सारे जिलों को कहा गया है कि आप अनिवार्य परीक्षा समिति बनाए, ताकि परीक्षा समिति बनने से क्वेश्चन पेपर संधारण, उसके छपाई और उसके संचालन में दिक्कत ना हो जी। दूसरा, जब परीक्षा समिति रहती है तो क्वेश्चन पेपर ही बनता है, मार्कशीट भी इजी बन जाता है, नहीं तो ज्यादातर देखा जाता है कि वो अंकों को ही उपलब्ध नहीं करा पाते, जैसे मार्कशीट मिलने में देरी होती है। तो ये सारी तैयारी हम अभी से करेंगे जी। तो हम दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करा पाएंगे, जनवरी में उनको रिवीजन करा पाएंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि हम थोड़ा लेट चलते हैं और ऐसा होता है कि फरवरी तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसके कारण हमको अतिरिक्त क्लासेस लेनी पड़ती है जी। जब अतिरिक्त क्लासेस लेने की स्थिति में शिक्षक भी पूरी मन से तैयार नहीं हो पाता और बच्चे को भी बोझिल हो जाता है। तो हम लोगों ने तय किया है कि हर हाल में

0: तक करना, जनवरी में रिविजन करना, जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और जब जनवरी में हम पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे, फरवरी में एग्जाम करेंगे, मार्च में रिजल्ट घोषित हो जाएगा, तो 1 अप्रैल से आसानी से हम स्कूल प्रारंभ कर लेंगे।
1: मंत्री जी, हमें यह भी पता चला है कि आपने बैठक में जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए और शिक्षा का एक न्यूनतम स्तर निर्धारित करने के लिए एक मानक भी कुछ बताए हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को यहाँ तक का आना चाहिए, माध्यमिक स्तर के बच्चों को यहाँ तक का आना चाहिए, इसके बारे में बताएं कि वो मानक क्या हैं।
0: देखिए, मैं हमारा दुर्भाग्य है, जब 2009 में सरकार थी, उन्होंने शिक्षा अधिकार कानून लाया, और शिक्षा अधिकार कानून तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कई ऐसे चीज़ों को जोड़ दिया जो बच्चों के शिक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के बजाय उसमें बच्चों का शिक्षा स्तर गिरते गया
1: जी।
0: जैसे एग्जाम नहीं लेना, बिना पढ़े पास करना, उससे जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनका टैलेंट लगभग खत्म होने जा रहा था
1: जी।
0: तो वो हम लोगों ने ऐसा किया कि आज ये स्थिति है, शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद मिडिल स्कूल में जाएंगे, बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ो तो एक मतलब पढ़ नहीं पाता, हाई स्कूल में पहुंचने वाले बच्चे को आप बोलोगे, नवमी के बच्चे को इंग्लिश में कुछ लिखे तो लिख नहीं पाता
1: जी।
0: तो हमने बैठक में कहा है, पहले भी इसके पहले पिछले सत्र हम बैठक में बोले थे कि हमको हर हाल में जो मिडिल स्कूल तक के पढ़ने वाले बच्चे को उनको 20 तक का पहाड़ा कंठस्थ होना चाहिए, 12 खाड़ी आना चाहिए, उल्टा गिनती आना चाहिए, और धारा प्रवाह हिंदी को पढ़ना आना चाहिए 5वीं तक के बच्चे को
1: जी।
0: और मिडिल स्कूल के बच्चों को, 8वीं तक के बच्चों को 25 तक का पहाड़ा कंठस्थ होना चाहिए, और धारा प्रवाह इंग्लिश के सेंटेंस को उसको पढ़ना आना चाहिए। और उसके लिए हमने टास्क दिया है, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे को हर हाल में सितंबर तक धारा प्रवाह हिंदी पढ़ने को आना चाहिए, और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को फरवरी 2027 तक उन बच्चों को इंग्लिश धारा प्रवाह पढ़ने के लिए आना चाहिए। और हमने कहा है कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल को विशेष रूप से फोकस करें,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वो बेस है
1: जी।
0: अभी शिक्षा का अधिकार कानून आने से हमारा बेस लगभग उजड़ गया था
1: जी।
0: वो आपस हमको उसको मजबूत करना है, जब बच्चा बेस मजबूत रहेगा तो आगे शिक्षा उसको बहुत आसानी होगी, ऐसा हमने टास्क दिया हुआ है।
1: एक बात और है मंत्री जी, कि ये देखने में आता है कि ठीक है, सुविधाएं हम देते हैं, हम एक ढांचा खड़ा कर देते हैं, लेकिन शिक्षक ही गैर हाजिर होते हैं स्कूल से। तो अब आपने ये भी एक व्यवस्था लागू करने की कोशिश आप कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, ऑनलाइन होगी, VSK ऐप के माध्यम से होगी, और यदि अवकाश भी लेना होगा शिक्षकों को तो ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, इसके बारे में बताएं कि किस तरह से कसावट लाई जा रही है।
0: देखिए, हमने तो चूंकि छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णु देसाय जी का सुशासन है, यहाँ पे चतुर्थ कर्मचारी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कर्मचारी से लेके मुख्य सचिव तक भी अपना अटेंडेंस भरते हैं
1: जी,
0: ऑनलाइन वो अपना अटेंडेंस करते हैं, बायोमेट्रिक से करते हैं। तो हमारा शिक्षक तो पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षा का उजियारा समाज को दे रहा है
1: जी।
0: तो उनको भी जब शासन सुशासन चला रही है तो उसमें उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी चाहिए
1: जी।
0: तो हमने कहा है कि ऑफिशियल जितने क्लर्कल स्टाफ हैं
1: जी,
0: जो बीओ ऑफिस, डीओ ऑफिस, जेडी ऑफिस, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेंगे
1: जी।
0: और जितने फील्ड के जो हमारे शिक्षक हैं
1: जी,
0: वो VSK ऐप के माध्यम से अपना अटेंडेंस देंगे
1: जी।
0: उससे VSK ऐप हम जानते हैं कि जो सदर जहाँ वो पढ़ाते हैं
1: जी,
0: उस परिसर के 50 मीटर के अवधि पे ही वो काम करेगा
1: जी।
0: तो कब करेगा, मान लो वहाँ नेटवर्क भी नहीं है, लेकिन आप उसमें अपलोड करोगे
1: जी,
0: हम करेंगे
1: जी,
0: तो वो समय भी आपको दिखाएगा कि आपने कितने बजे किया।
1: अच्छा,
0: तो उसमें जो कई लोग टाइम बे टाइम जाते हैं, नहीं जाते हैं, अपसेंट मार देते हैं
1: जी,
0: उसमें कसावट आएगा
1: जी।
0: दूसरी बात ये है कि उपस्थिति 100% रहेगी। ज्यादातर जगह शिकायत ये आती है कि शिक्षक किसी गांव का है, वो वहाँ पढ़ाने नहीं जाता
1: जी,
0: वो कहीं दूसरी जगह अटैच रहता है
1: जी।
0: अभी हमको ध्यान में आता है कि एवरेज हर जिलों में
1: जी,
0: जितने पद सेटअप स्वीकृत है उससे डबल लोग वहाँ कार्यरत हैं।
1: अच्छा,
0: ये कौन लोग हैं? ये वही शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते
1: जी,
0: और ऑफिसों में अटैच हो जाते हैं, और बच्चों को

0: जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो शिक्षकों का जो लाभ मिलना चाहिए उससे वो वंचित हो जाते
1: वंचित हो
0: हैं। तो
1: जाते हैं।
0: हमने अनिवार्य लागू किया है, जो जिस स्कूल में है वो उसी स्कूल में पढ़ाएगा।
1: जी
0: और अटैच के लिए हमने कल बहुत कड़ाई इसका है, चूंकि अब तो VSK में वो दिखता है कौन कहाँ से ये कर रहे हैं,
1: जी
0: बायोमेट्रिक्स से दिखता है।
1: जी
0: तो कल सारे DOs को अनिवार्य का है, और पहला और कल आखिरी वार्निंग दी गई है। इसके बाद अगर ये शिकायत आई तो
1: जी
0: संबंधित DOs के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे।
1: एक बात और है मंत्री जी, कि स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में बच्चों में नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति की समझ को विकसित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अलग अलग तरह के जो मंत्रों का स्कूलों में वाचन किया जाएगा, इसके बारे में एक शेड्यूल भी बनाया गया है, इसके बारे में भी हमें बताएं।
0: देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, पहले हम लोग राष्ट्रगान गाते थे,
1: जी
0: फिर राष्ट्रगीत होता था। राष्ट्रगीत में जानबूझ के पिछली गवर्नमेंट तुष्टिकरण के लिए देश के सामने वंदे मातरम पूरा लाया नहीं।
1: जी
0: अभी माननीय हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब आह्वान किया कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो सारे स्कूलों में उसका गायन होना चाहिए।
1: जी
0: तो हमने माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धा विष्णु देसाई के मार्गदर्शन में सभी स्कूलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और इनके साथ हम तीन मंत्र दिए हैं।
1: जी
0: चूंकि सब स्कूलों हम जाते हैं, देखते हैं कि कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले दीप जलाते हैं, तो दीप मंत्र हम कर रहे हैं,
1: जी
0: सरस्वती मंत्र करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं। ये तो बिना बोले भी स्कूलों में किया जाता है,
1: जी
0: लेकिन उसको हमने कंपलसरी सबके लिए कहा है।
1: जी
0: उसमें दीप ज्योति परम ज्योति, बच्चों के अंदर आज जो तेजोमय होना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: कहीं ना कहीं उसी कमी दिखती है।
1: जी
0: मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मंत्र के प्रभाव से उनका तेजोमय बढ़ेगा,
1: जी
0: सरस्वती वंदना करने से एक अच्छा भाव आएगा। क्योंकि
1: जी
0: हम शिक्षा के मंदिर में जा रहे हैं और शिक्षा की देवी साक्षात सरस्वती है,
1: जी
0: तो वो बच्चों में पढ़ाई के प्रति, पुस्तक के प्रति एक भाव अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल
0: गुरु मंत्र बोल रहे हैं, गुरु मंत्र में जो गुरु पढ़ाने जा रहे हैं, पहले एक समय था, आप सब ध्यान देंगे कि कोई गुरु जी बस से उतर के मेन रोड से, जैसे वो गांव की ओर आता था,
1: जी
0: तो राहगीर, जो जितने लोग राहगीर चलने वाले थे, रहते थे, चाहे खेतिहर, मजदूर, किसान, जिसके बच्चे नहीं पढ़ते थे,
1: जी
0: वो भी गुरु जी देख के उसको नमन करता था, प्रणाम करता था, नमस्कार
1: बिल्कुल
0: करता था,
1: जी
0: एक भाव था।
1: जी
0: आज वो भाव में कहीं कहीं कमी आ रही है।
1: जी
0: ये गुरु मंत्र प्रतिदिन बच्चे हाथ जोड़ के जब बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से गुरु शिष्य का जो संबंध
1: जी
0: फिर से प्रगाढ़ होगा, फिर से एक भाव आएगा। आज देखिए, जब बच्चा हाथ जोड़ के गुरु मंत्र बोलेगा तो स्वाभाविक है कि बच्चे के मन में तो अच्छा आएगा ही,
1: जी
0: उसको देख के संबंधित शिक्षकों के मन में भी एक बड़ा एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज देखते हैं कई जगह, आप देखें कोई अश्लील कोई व्यवहार करते हुए एक न्यूज चैनल ने चलाया, कई जगह शिकायत आती है शिक्षक शराब पी के पहुंच जाते हैं, कई जगह शिक्षकों को हरकत अमानवीय रहता है।
1: जी
0: तो ये गुरु मंत्र बोलने से, सरस्वती मंत्र बोलने से, दीप मंत्र बोलने से एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमने ऐसा किया है कि इसको प्रार्थना के साथ करना।
1: जी
0: उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में, देश में एक से एक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है।
1: बिल्कुल
0: हमने पूरे 12 महीने के 24 महापुरुषों का
1: जी
0: हमने चिन्हित किया है। संत रविदास जी हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, मन चंगा कठौती गंगा
1: जी
0: की बात उन्होंने कही।
1: जी
0: संत रविदास जी जीवनी हम पढ़ेंगे, गुरु घासीदास जी की जयंती है, गहिरा गुरु है हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, खूबचंद बघेल जी हैं, दाऊ कल्याण सिंह है जो जिन्होंने अपना सब कुछ दान दिया,
1: जी
0: भक्त माता राजीम है जिसको अनुयायी हमारे साहू समाज के लोग मानते हैं,
1: जी
0: ऐसे महापुरुष जो अवतरण हुए हैं उनकी जयंती हर महीने कोई ना कोई रहती है। तो उनका हर महीने 2 महापुरुषों का बच्चे वाचन करेंगे।
1: जी
0: महापुरुषों का जीवन, जैसे बच्चा बचपन से किसी इंस्पेक्टर को देखता है
1: जी
0: तो उसके मन में आता है कि मैं आगे वाले समय में पुलिस बनूंगा, शिक्षक को देख के वो पुलिस बना, तो वैसे ही हमारे देश के अलग अलग महापुरुष हैं,
1: जी
0: उनके जीवन को जब देखेंगे तो जीवन को देख के वो कुछ प्रेरणा लेंगे,
1: जी
0: ऐसा।

0: ने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ महापुरुषों का जीवन भी वाचन होगा। सांध्य वेला में जब जब छुट्टी का समय होता है तो हमें सारे बच्चों का है राजगीत, चूंकि छत्तीसगढ़ महतारी है, धरती माता है, उनके गीत राजगीत हो, साथ ही साथ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का भी कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, मैं करना चाहता हूँ कि अमेरिका के हम्बर्ड जो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि प्रति सेकंड 1,10,000 ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है गायत्री मंत्र, और उन्होंने उसको कहा है सांध्य बेला में इसको अगर करा जाए, जो हम हिंदू संस्कृति में बोलते हैं नाद ब्रह्म जो बोलते हैं, जो संध्या कालीन जो समय होता है जब पूरी तरह धूप नहीं रहती, पूरी तरह संधेरा नहीं रहता, सांध्य अवसर में जो अगर गायत्री मंत्र का वाचन करे तो उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव यूनिवर्स में पड़ेगा
1: जी।
0: उस नाते जब मैं बोल रहा हूँ हम्बर्ड यूनिवर्सिटी और वहाँ के वैज्ञानिकों ने जब शोध किया है
1: जी।
0: तो जब अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर सकता है तो हमारे देश के जो गायत्री मंत्र का उद्भव तो हमारे जैसी मुनियों की है, किसी धर्म का नहीं है
1: जी।
0: सनातन ये मंत्र है, वैदिक
1: जी।
0: मंत्र है
1: जी।
0: और ऐसा बोलना उचित नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म का है, सभी का है, कोई अच्छा ही है उसको सबको ग्रह करनी चाहिए। तो उसमें एक बहुत सकारात्मक प्रभाव बच्चों के मन मस्तिष्क से पड़ेगा, फिर पूरा विश्व में आज भारत ही है जो पूरे विश्व के सुख और शांति कल्पना करती है, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का हम उसमें वो मंत्र बोला है। तो बोले का हेतु ये है बचपन से बाल अवस्था से
1: जी।
0: अगर हम बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम उनको तैयार करेंगे, जब वो युवा बनेगा तो बहुत मजबूत रहेगा। हमारा प्लान ये है पढ़ाई में फोकस करना है
1: जी।
0: पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी रहे, शिक्षा भी रहे और जिस धरती में वो जन्म लिए उस धरती प्रति प्रेम भी रहे
1: जी।
0: तो ये सारी चीजों को समायोजन हमने हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पढ़ा अच्छा बच्चा अच्छा इंग्लिश बोले, अच्छा मैथ्स भी आए, उल्टा गिनती आए, सीधा गिनती आए और साथ साथ कुछ मंत्रों का भी उनको ज्ञान रहे। आज मैं देखा हूँ एक इंटरव्यू में रामायण के किसी पार्ट को अगर दिल्ली की यूनिवर्सिटी के बच्चों पूछते हैं तो उनको मालूम नहीं रहता है कुछ मंत्रों के बारे में, उनको मालूम नहीं रहता। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर हम पॉजिटिव चीज़ें लें तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बीच में हम भोजन मंत्र भी हमने जोड़ा है उससे मध्याह्न में
1: जी।
0: उसका हेतु है हम सब देखते हैं आज बच्चों में अनाज के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं रहता
1: जी।
0: पहले हम जब भोजन करते थे तो प्रणाम करके भोजन करते थे, जिस थाली में हम भोजन करते थे उसमें हाथ नहीं धोते थे कि इसको हमने प्रणाम किया। आज बच्चे हम आप देखते हैं शादी पार्टियों में जाते हैं, लोग भर थाली खाना लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं
1: जी।
0: जब वो मध्याह्न भोजन में हाथ जोड़ के जब वो सनावतु मंत्र बोलेगा तो उस बच्चों के मन में भोजन का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, भोजन के प्रति, अन्न के प्रति उसमें एक अच्छा ये रहेगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा
1: जी।
0: ये भाव हमारे अंदर है शिक्षक साथ, संस्कार भी हो, संस्कार के लिए हम लोग कुछ वैदिक मंत्रों को किसी धर्म पंथ के हिसाब से नहीं, जो अनिवार्य आवश्यक है उसके हिसाब से हम उसको कर रहे हैं।
2: मंत्री जी एक बात और है कि आपने ये कोशिश की है कि स्कूलों में जो है शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, लेकिन हम जैसा जानते हैं कि कई बार ये भी देखने में आता है कि जो स्कूल भवन है उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती और मानसून का आगमन हो गया है, मीडिया में भी खबरें आती हैं कि स्कूल जो है उसमें पानी टपक रहा है, तो जो स्कूलों की स्थिति है, जो स्कूल भवनों की जो स्थिति है उनको सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: अभी हमने पहली बार स्कूल खुलने के 15 दिन पहले सारे जिलों को हमने 20 करोड़ की राशि मरम्मत के लिए जारी किया है। उसको इस संबंध में DOs को निर्देशित किया गया है कि जो पैसा मरम्मत के लायक है उसका उपयोग आप मरम्मत में करें
1: जी।
0: उसका उपयोग हो और सकारात्मक उपयोग हो। उसके अलावा अभी हम लोग इस बार भी 1300 स्कूल नए बिल्डिंग बनाने वाले हैं, अभी एक लिस्ट हम मंगाए हैं, संबंधित विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके अनुशंसा पे आने वाले समय में जहाँ जहाँ अति आवश्यक है उन सारे भवनों को

0: पिछले साल भी हमने लगभग 300 भवन दिया, इस साल भी हम नया भवन दे रहे हैं, और आने वाले समय में कितने भी स्कूल ऐसे हैं जहां टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट को चिन्हित करके कहां कौन सी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख के आने वाले समय में धीरे धीरे करके जितनी भी ये समस्या है हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।
1: एक सवाल और कि बच्चों को भी काफ़ी सुविधाएं शासन की ओर से दी जा रही हैं, जैसे निशुल्क गणवेश है, पाठ्यपुस्तकें हैं, ये समय पर उपलब्ध हों, गुणवत्तापूर्ण हों, इसके लिए क्या कोशिश है?
0: देखिए, अभी मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, स्कूल 16 जून को खुला है, पूरे प्रदेश में यूनिफॉर्म पहुँच गया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पे इस बार हम लोगों ने स्कूल खुलते ही बच्चों को यूनिफॉर्म हमने अनिवार्य दे दिया। कई जगह दोनों सेट दे दिए, कई जगह एक सेट दिए हैं,
1: जी
0: लेकिन पहले दिन उन बच्चों को यूनिफॉर्म मिला है। बुक भी, सरकारी स्कूल का बुक हर हाल में 30 जुलाई तक पूरे शासकीय स्कूलों का बुक हम पहले दे देंगे। और साइकिल की बात है तो साइकिल सभी बच्चों को नहीं देते, कुछ अनुसूचित जाति के बच्चों को हम देते हैं,
1: जी
0: तो वो भी साइकिल वितरण काम भी हम जुलाई में कर लेंगे। इनके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म साइकिल तो हम दे ही रहे हैं।
1: जी
0: माननीय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पहली बार हम पूरे प्रदेश के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी को स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट कर रहे
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: ICT क्लास लैब हम बना रहे हैं,
1: जी
0: 22,000 कंप्यूटर लैब हम इस साल दे रहे हैं,
1: जी
0: और इस साल दिसंबर तक सारे स्कूलों में कंप्लीट हो जाएगा।
1: जी
0: उसका लाभ ये होगा, जो आपने VSK सिर्फ हम ऑनलाइन अटेंडेंट के लिए नहीं है,
1: जी
0: आने वाले समय में VSK अभी भी डाइट्स जुड़ा हुआ है, सभी स्कूलों से ये जुड़ जाएगा, अभी नेटवर्किंग जुड़ जाएगा, तो आने
1: जी
0: वाले समय में सब जगह स्मार्ट क्लास LED लगा हुआ है।
1: जी
0: किसी स्कूल में मान लो सब्जेक्ट वाइज कोई टीचर नहीं पहुंच पाया,
1: जी
0: बच्चे खाली बैठे हैं, तो उनका जो जैसे केमिस्ट्री क्लास है तो केमिस्ट्री क्लास को ऑनलाइन के रूप में वो बच्चों को जो स्मार्ट क्लासेस हैं उसमें उस पढ़ाई उसमें चलेंगी। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किसी के आने या नहीं आने से बच्चों के प्रभाव पढ़ाई में कोई भी प्रकार का प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, पढ़ाई निर्बाध रूप से चलेगी। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी चल रहा है, इस दिसंबर तक कंप्लीट करने का हमारा प्रयास है। आने वाले समय में बहुत बेहतर शिक्षा व्यवस्था हम करेंगे।
1: एक अंतिम प्रश्न, जो शिक्षा का अधिकार है उसमें यह भी है कि जो गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको अच्छे स्कूल में भी, मतलब उनको भी पढ़ने का अवसर मिले। छत्तीसगढ़ में भी इस दिशा में वो होता है, अभी पहला चरण हो गया है, दूसरा चरण होने वाला है। ये पारदर्शी तरीके से हो, प्रभावी ढंग से ये सब चीज़ें हों, तो वो गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
0: अब इसमें तो सीधा लॉटरी सिस्टम है,
1: जी
0: जो एप्लीकेंट रहता है, वैलिड एप्लीकेंट रहता है, वो जांच होता है कौन सही है गलत है, अगर उनका ये सही आता है, फॉर्म सही भरा रहता है, तो उनकी लॉटरी लगती है, और
1: जी
0: जिसका भाग्य भाग्य के ऊपर है लॉटरी, जिसको मिल गया वो उसमें शामिल हो जाता है।
1: मंत्री जी, हम जानते हैं कि बड़ा व्यस्त आपका समय रहता है, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें खूब वक्त दिया, बहुत विस्तार से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और सारे विषयों पर बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
0: धन्यवाद जी।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से हमारी यह बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।

0: अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता। ये प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति थी। मीडिया व्यूअर एफएम बैंड पर
1: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र यादव से विशेष भेंट वार्ता, जिसका अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 10:25 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज के शेष कार्यक्रम के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 10:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का।

फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा सुबह 11 बजे से। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण फिर से किया जाएगा सुबह दोपहर 12 बजे से।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट का समय होगा शाम 5 बजे, भजन संध्या का समय होगा 5:10 पर, चित्र प्रसंगीत गाने दीजिएगा 5:30 पर, फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का समय होगा 6:20 पर। लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण अधिक लाभ का आधार। आज की नसीहत में सुनिएगा जैव विविधता के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का उपयोग। आज का टिप कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत का समय होगा 8:20 पर, फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात्रि 9 बजे से। विविध संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10 बजे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा का समय होगा 10:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
0: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से ही बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक कुमार शानू की आवाज में दिल का रिश्ता फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा समीर ने, तर्ज बनाई है नदीम शवर ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है इंद्रनगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानू, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अली, मासिफ नईम राजा, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि, शीतल पाटिल, भाटापारा दत्तरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जाविंद कुमार वर्मा। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
6: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हेमंत कुमार की आवाज़ में अनारकली फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है HS बिहारी ने, तर्ज बनाई है सी रामचंद्र ने। इस गीत को सुनने वाले पसंदकर्ता हैं झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण, विमला, मास्टर हर्ष, शुभम बाधवानी, खुशी बाधवानी, कन्हैया लाल, तारपुर मोरवा से कारी राय, मीना, पुंजराज आर्यन, आरती, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, नीतू, फारूक, ललन मिश्रा, ढोली साकरा से जयंत कुमार बैरागी, गांधी चौक रोबर्ट पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जैतक, मीका बैरक। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब हम आपको सुनवाने जा रहे शान सुनिधि बाबुल सुप्रियो की आवाज में मैंने प्यार क्यों किया फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा समीर ने, तर्ज बनाई है हिमेश रेशमिया ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है जतुका किशनपुर से आलम, दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सवाना आलम, चांदनी नाच, सिराजपुर, गणेशपुर से वकील राही, फिरोज आलम, नाच प्रवीण, अर्श, शांतिनगर इंदौर से खुशी, ब्रोनो, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललिता, नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग, मालती चौधरी, बगबुरुआ पथरिया से इस गीत को सुनने की फरमाइश की है नरेन, कुसुम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष, नेताम। सुनता पसंद का ये गीत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं।

0: मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में वम्बुआ फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है कमार जलाल बदी ने, तर्ज बनाई है सोनिक ओमी ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी से दिनेश करुणा वर्मा, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना योगेश मंडी, सौरभ शाइना, निवान शर्मा, सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश मधु, हिमांशु अंकित देवांगन, गौशाला पारा से विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा, यशु अंशु गुप्ता। सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, 22 करोड़ की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 11 बजे हैं। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कुछ ऐसे गाने जिनमें हैं बारिश के छींटे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बोल हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में यह गैर फिल्मी गीत आपने सुना।
1: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादवां भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे। बिलकती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है, न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।
0: मौसम का झोंका गुलजार की आवाज में आपने सुना, उनका ही ये कलाम ये कब आते हो एल्बम से था। और अब भूपिंदर की आवाज़।

0: चंदनदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: इसी के साथ चित्रपट सदाबहार नगमों का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटा दिया है। इस तरह से पश्चिम एशिया संकट से पूर्व की आपूर्ति स्थिति बहाल कर दी गई है। इसके अलावा एलपीजी की विशाल आपूर्ति जिसे संकट की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था को संकट पूर्व खपत स्तरों के 50% तक बहाल किया गया है। यह बहाली हाल ही में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हुए सुधार को देखते हुए की गई है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। पासपोर्ट की अन्य श्रेणियों में भी शुल्क में वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के लिए

0: बसों में उपकरण लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला के अंतर्गत लक्की ड्रॉ के विजेता हितग्राहियों को आज रायपुर में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मंडल द्वारा आयोजित नवीन लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता रचनाकार को 2.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से कहा है कि दाखिले से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता, राजपत्र में प्रकाशन, संबद्धता और पाठ्यक्रम की मंजूरी की जाँच अवश्य कर ले। रेलवे द्वारा भुवनेश्वर और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बीच एक फेरे के लिए आज स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन आज भुवनेश्वर से रवाना होगी, जो 28 जून को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर और दुर्ग स्टेशन में दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिलासपुर के रतनपुर तहसील के लालपुर हलका के पटवारी को 25,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पटवारी नक्शा बटांकन के लिए रिश्वत मांग रहा था। इसके अलावा बिलासपुर के ही मस्तूरी में ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापा मारकर बिजली विभाग के क्लर्क को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोप है कि यह क्लर्क बिजली का खंभा लगाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित कई शहरों में ताजिए निकाले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: वाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देश

0: ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यादों की महफिल।

तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

शैलेंद्र के बोल थे एसडी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से। अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम बालिका वधू।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। अशोक भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजें, गुलशन बावरा, राहुल देव बर्मन, सत्ते पे सत्ता।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए सुरीला सफर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में हम एक इबारत, एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और वो टेक्स्ट कार्यक्रम के काफी पहले पोस्ट कर दी जाती है, आज भी कर दी गई है। तो आज की इबारत आपको बता दें, बदरा की गागरी में ढेर सारा पानी, मन को रंगीला करे बारिश की कहानी, इन हवाओं में चलो उड़ चले कहीं, ना आसमां का पता हो ना दिखे जमी, ऐसे मौसम में जाने क्या क्या याद आए, कभी मन मुस्कुराए कभी आंख भर जाए, दिन में एक बजे जब मिलेंगे हम, गीतों का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे हम। भाई इस टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं और इन तमाम रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम का सफर हमें आगे तय करना है। एक श्रोता है जिन्होंने कविता का जवाब कविता से दिया है।

वो लिखते हैं, इबारत की इजाद वाले स्वयं पधारे हैं, आज सफरे कारवां के भाग्य न्यारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीला सफर में गानों की बौछार होने लगी है, जो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप कानों में एक मधुर आवाज घोल रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट, एक श्रोता है जिनका अंदाजा है कि आज तो गागरी वाला मशहूर गाना बजेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि और कोई गीत हो ना हो लेकिन ये गाना जरूर होना चाहिए कि रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, फिर से आई यो बदरा विदेशी और जब जब बहार आई। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज फिर बारिश की कहानी में पानी, कैसा है आपका रंग जिंदगी का शोर, बारिश के तारों पर आई बारिश, याद है वो कागज की नाव, वो बारिश का पानी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर लिस्ट भेजी है, यानी इस इबारत में जितने शब्द हैं उन शब्दों पर गाने, और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर गाने मैच कर रहे हैं। जो शब्द इन्होंने चुने हैं, बदरा, गागरी, पानी, मन, रंगीला, बारिश, हवा, उड़ आसमान, जमीन, ओ हो हो, 20 शब्द चुन लिए हैं। क्या बात है, क्या मेहनत है, सलाम। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों पर अपनी बातें कही हैं। आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी इस गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज। क्या आपका गाना हमारे गाने से मैच किया? और हां, एक और बात, आपके शहर में बादल सिर्फ छाए हैं या बरस भी रहे हैं? और जब छाते हैं बदरा, आपके मन में आती हैं कौन सी बातें? जल्दी से विविध भारती के फेसबुक पोस्ट पर जाइए और कीजिए कमेंट। विविध भारती का फेसबुक पोस्ट खोजने के लिए फेसबुक पर सर्च बॉक्स में लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, फिर पहुंचिए सुरीला सफर की पोस्ट पर। देखिए बादल छा गए हैं, कचरा घुलने लगा है, घटाएं बरसने लगी हैं। इस गाने में महिला स्वर किस गायिका का है ये बताइए।

ये सुदास के साथ हेमांति शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और ये खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहाँ सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहाँ से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसें, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं, सफ़ेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की ये कविता, मजा आ गया। आपने कविता लिखी, फिलीपींस से एक श्रोता का मैसेज।

ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इसकी इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहाँ पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये हैं हमारे तमाम श्रोता जो अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहाँ चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज चल रही है, वो है तेज हवा। और हवाओं से मुझे पतंग की याद आ गई। चलिए आज पतंगबाजी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करें। जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए पतंगबाजी से जुड़ी जो आपकी सबसे शानदार याद है वो लिख भेजिए। इस गाने के फौरन बाद पतंगबाजी वाले सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं। तो शुरू हो जाइए, किसने किसकी पतंग काटी, किसने मांझा सूता, किसने पेंच लड़ाए और किसने बाजार से ताव लाकर पतंग बनाई।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। और पतंगबाजी को लेकर कितने सारे कमेंट्स आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का अक्सर पतंग पर एक प्रेम पत्र लिखकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता था, वो अद्भुत दृश्य होता था। 90 के दशक में प्रेम पत्र का बड़ा क्रेज था, ये कमेंट। और इसके अलावा ये कमेंट कि हमारे गुजरात में पतंग मशहूर खंबात के बरोड़ा के जहां बनता है, हमारे गांव में दिवाली के बाद पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि करीब 50 साल बाद इस संक्रांति में मेरे मुझसे 2 साल बड़ा भाई, जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा सूता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफ़ी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चकरी ज़रूर पकड़ कर रखते थे। रफ़ी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मज़ा आता रहा है। एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती हैं कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़ कर पीस कर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो ज़रा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं। मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूनावाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल ली और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था न जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा, ना आसमां का पता हो ना जमी का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहाँ पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहाँ कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मज़े लें। इसके अलावा एक और श्रोता है वो लिख रही हैं कि क्या बोलें ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतज़ार में हैं। और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे, तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक ज़रा आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ, जो बहुत ही झूम झुमा देने वाला गाना है।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मज़े लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो सूरत गुजरात में हैं और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहाँ बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक ज़मीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मज़ा आता था और जब पतंग कट कर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गाँव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और ख़ास त्योहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पींच लड़ाने में मज़ा तो बहुत आता था लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई कि अब हम चल रहे हैं आसमां के नीचे।

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होठों पर, आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है? आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है?

भाई ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की, और अभी भी जब भी कोई गाना ख़त्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं। ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना लपक झपक तू आर्य बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी। एक और श्रोता हैं जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही। देखिए किसने तरह के गाने हमारे अलग अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक श्रोता लिख रही हैं कि इतना समय ही कहाँ कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाय गर्मी उफ गर्मी यही उनकी जुबां पर है। चलिए भाई ठीक है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबां पर सुबह से है नैनों में पतरा छाए। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि अकोला में हम शाम को समय निकाल कर बहुत पतंग उड़ाया करते थे। और इसके अलावा कई और श्रोता हैं जो बारिश की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बारिश के इंतज़ार में हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग उड़ाने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका मांझे से हाथ ना कटा हो। अभी कुछ साल पहले एक हृदय विदारक घटना सुनी थी कि मांझे से किसी व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो गया था। उसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शादी के बाद हम पहली बार मूवी देखने गए, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और हम दोनों के मुंह से निकला रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। आज भी ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो चाहे बादल छाए हों, चाहे आप गर्मी से हों हलाकान या परेशान, पर कम से कम

ये गाना तो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो आपके होंठों पर कौन सी पंक्तियां आती हैं।

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं, कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं, बरखा रानी ज़रा जम के बरसो हमारे ग्वालियर में भी, इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज़ में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज़ें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। एक श्रोता को ये कन्फ्यूजन हुआ कि ये त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये हैं जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर आगे बढ़कर ज़रा देखें, एक श्रोताएं लिखते हैं कि हमने कोलकाता में भी पतंग उड़ाई थी, विक्टोरिया मैदान में पतंगबाजी देखी। जवानी में बहुत लंबे लंबे पींच लगाए हैं, पतंग बहुत छोटी सी नज़र आती थी जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ा करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दसवीं की बात है, बारिश का मौसम था, शाम का समय था, जब मैं कोचिंग जा रहा था, रोड के किनारे काफ़ी गहरी नाली खुदी थी, उसमें पानी भर गया था, बरसात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी चप्पल इस पानी में धो लेता हूँ। लेकिन जब मैं उसमें डूब गया, मेरा रजिस्टर छतरी के ऊपर तान में रखा हुआ था और मैं पूरा भीग गया था, लेकिन मेरी छतरी और मेरा रजिस्टर बच गया।

इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मांझे पर हम चावल के आटे का घोल लगाते थे, मराठी में खड़ कहते हैं। इसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख कहते हैं कि कहाँ गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता है, इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, ख़रीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज़ की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्ज़े में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊँची छत से गिर कर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओहो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज़्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियाँ एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूँ। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार, पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर, बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ

करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीगकर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता हैं, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफ़र की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था। मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताज़ा हो गई हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये बता?

आती हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 34वीं कड़ी।

बारिसाल जैसी घटनाएं बंगाल में बार बार घटने लगीं। वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजों का विरोध करना आम लोगों की नजर में एक रोजमर्रा की बात बन गई। यह विरोध अब और अधिक संगठित रूप से होने लगा। बंगाल में ऐसी घटनाएं जगह जगह होने लगी। पुलिस का डर ही नहीं बचा। यह लहर मजदूर वर्ग में भी फैल

0: 1906 में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के लिए भगिनी निवेदिता कार्यरत थीं। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्य भारती इस अधिवेशन में पत्रकार के रूप में उपस्थित थे। भगिनी निवेदिता के साथ हुई चर्चा के कारण सुब्रमण्य भारती के लेखन और विचारों को एक दिशा मिली। सुब्रमण्य भारती ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था।
1: हिंदुस्तान मतलब जंजीरों से जकड़ी हुई दुखी माँ है, ऐसा भगिनी निवेदिता कहा करती थी। सुब्रमण्यम भारती पर भगिनी निवेदिता के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा।

0: वंदे मातरम शब्दों का उपयोग करते हुए एक ओर उन्होंने भारत के वैभव, इतिहास, संस्कृति का गौरव किया, तो दूसरी ओर जातिवाद जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा,
1: भले हो यहाँ हजारों जातियां, पर न हो विदेशियों को यहाँ स्थान। एक माता के पुत्र हम चाहे लड़ें जितने, हैं फिर भी एक दूसरे के बंद

0: यहाँ यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। सुब्रमण्य भारती की ये क्रांतिकारी कविता है। इसमें वो इंसान को पुकार कर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव गलत है।
1: भारत वंदना इस प्रसिद्ध कविता में सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं,
2: हमारी भारतीय माताएं बचपन में विवाहित होकर अपना घर बसाती थीं। यही उन्हें एहसास होता था मातृत्व के आनंद का, संतान प्राप्ति के गर्व का। जगह जगह स्थापित हमारे मंदिरों ने बड़ों को आत्मा के सत्य की अनुभूति करा दी। काल प्रवाह में उनके विलीन होने पर उनकी संतानों ने वेदी की उनकी जगह ले ली। सत्य की उस स्मृति को मैं वंदन करता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में जो वंदे मातरम के दो अनुवाद किए वे इस प्रकार हैं।

तमिल के जैसे ही दक्षिण की तेलुगु भाषा में भी वंदे मातरम का अनुवाद हुआ। अनुवादक कवि थे लक्ष्मी नरसिंह पंतलु। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में एक बड़ी सभा में बिपिन चंद्र पाल के सम्मुख वंदे मातरम तेलुगु भाषा में गाया गया। वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, मंद मंद मलयानिल जागृत निर्मल जीवन मधुर फलामृत,

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 34वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: कौन लाया? कौन लाया?
4: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
5: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
4: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
6: एक टुकड़ा धूप का।
4: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी

0: तैनात के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी के सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधीय सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business.
4: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
4: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।

0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। में 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बिलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3

0: से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान, कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप D के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में यह गोदान फिल्म का गाना था। अनजान की बोल थी, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों

0: ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियो नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाते गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है? हाँ, शीला जी
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के क्या हाल चाल है?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप ऊप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर निकलते वक्त छाता लेके
1: पी लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, विविध
0: क्या बात है, शुक्रिया
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी।
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी, आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में हम
1: जी।
0: सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई है?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और तीन चार आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ। तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला, तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरी

0: के साथ खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए, किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए, और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बागुल, सावन में लीजो बुलाए।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, जिंदगी
0: पूनम जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: में तो मतलब बस हाउस वाइफ है मैडम जी।
0: हाउसवाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ जी
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में, और ये कला जो
1: हाँ
0: होती है ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी,
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो से बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है। एक
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी मैं श्वेता भारती, जिला इंडिया ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो?
0: जी हम भी मजे में हैं, और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज़्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज़्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने
1: मुझे
0: में?
1: मुझे गाने में आनंद मिलता है, रेडियो सुनती हूँ,
0: गाते भी है।
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी
0: जी, और गाते भी हैं आप?
1: जी दीदी गाती हूँ।
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: अच्छा, गुनगुना के भी सुनाओ।
0: सुनाइए।

0: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते
1: जी
0: गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
1: दीदी, सुरजीत
0: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का सुना दीजिए दीदी। कोई
0: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: भी सुना दीजिए।
0: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ, और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी
1: जी
0: कलाओं में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी है या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?

0: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
1: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहां जहां मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
1: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
0: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें, ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी,
1: ये
0: ऐसा
1: बहुत
0: मेरा
1: सही
0: मानना।
1: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर, अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सई जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
0: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज़ है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है, वहाँ पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: हाँ हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उन उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी
0: आप क्या काम करती है वहाँ पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहाँ जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे

0: मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले, तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
1: तो कैसा लग रहा है आपको वहाँ जाकर?
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
0: जी
1: जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
0: जी
1: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
0: जी
1: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
0: हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तक ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: आपको भी वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो
0: जी।
1: बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
0: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
1: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
1: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, कौन
1: हेलो सहेली,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
1: जी
0: किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत
1: और
0: अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में
1: जी
0: हर कोई नहीं सोचता है। ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: जी
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना
1: जी
0: गुनगुना के बताइए आप।
1: जी

ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से।
0: हिसार हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती हैं, व्यायाम करती हैं?
1: थोड़ा बहुत बस घर के कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखे जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत की जिंदगी, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी ही खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उसका कोर्स किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी
1: और
0: बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप
1: जी
0: तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला
1: मुझे
0: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब
1: जी जी
0: हम योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी। लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा।

0: सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार हैं 400-24662, फिर से 400-24662, दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानि 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फ़ोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारे सखियों के फ़ोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी। उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था, दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सोने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।

सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं। नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

0: गुजर जाए दिन।
1: तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था, उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे, रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता, यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए कुछ सूझ नहीं रहा था, ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलफेंक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि सौ राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

तू में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदा दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है

समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे, कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहें, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहें।

लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे। आगे बढ़ गए, कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली,

0: कहिए
1: जी जी जी कुछ नहीं बाबा, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
2: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर, सूरजपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगरा, कैराडांड, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, सलका, मूड़गांव, शिवनगर, जनार्दनपुर, मेंढरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर, रघुनाथ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, शिवपुर, पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, नवापारा, सोनहत, नवगई, गैना, अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, बदौली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चाउरपानी, बांसाझाल, आमापानी, घोघरा, मानपुर, दांती ढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा और तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, राजा आमा, महेशपुर, बालाझर, सोनगिरसा, बीजाघाट, सारू ढाब, तेलाइन, टी पहाड़, कोल्हेन, झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 108 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलारगढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बंगुरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासुल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

0: अभी आप सुने थे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार कोट FM 100.7 MHz पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं मनोप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर पश्चात यानी शाम 5:10 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। हमारे केंद्र से सुनिएगा चित्रपट संगीत आज शाम 5:30 पर। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आज शाम 6:00 से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे आज शाम 6:10 पर। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम बीजे फिर सुनिए के पहले भाग का प्रसारण आप सुनिएगा आज शाम 6:20 पर। इस कार्यक्रम का दूसरा और शेष भाग आप सुन सकते हैं आज शाम 7:00 से। रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आज शाम 6:45 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण सुनिएगा आज शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा अधिक लाभ का आधार। हमारे केंद्र से सुनिएगा गैर फिल्मी गीत आज रात्रि 8:20 पर, 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 9:00 से, आज रात्रि 10:00 से। तो ये थी जानकारी आज के सांधिकरण प्रसारण सभा में प्रसारित एवं मनोप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की जानकारी।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5:10 हुए, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम भजन संध्या। इस कार्यक्रम में आइए आज हम आपको सुनाते हैं पंडित किरण मिश्रा की लिखी भक्ति गीतों को।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा।
2: और आपके अपने लोकल

0: रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
2: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

अभी आप सुने तो भक्ति संगीता कार्यक्रम भजन संध्या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 होने को आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में भी आप सुन रहे हैं फिल्म जब का गीत। हमारा है आरडी बर्मन।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जैसे को तैसा का गीत। हम बसी के लिखे बोलों को संगीत से संवारा था आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म हमजोली से। हम बच्ची के लिखे बोल हैं संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है।

हम जोली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म जख्मी से। देखिए बोलों को संगीत दिया है बप्पी लहड़ी ने।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं

0: मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं मनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर पश्चात यानी शाम 6:10 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए कि पहले भाग का प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:20 पर। इस कार्यक्रम का दूसरा और शेष भाग सुनिएगा आज शाम 7 बजे से। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 6:45 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण सुनिएगा आज शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण अधिक लाभ का आधार। साथ ही सुनिए क्रम आज का मौसम, आज का टीप, कृषक प्रश्न मंच और आज का मंडी भाव। हमारे केंद्र से सुनिएगा गैर फिल्मी गीत आज रात्रि 8:20 पर, आज रात्रि 8:30 पर। समाचार का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर।

0: का सीधा प्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, रात्रि 10 बजे से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप लोग कराएंगे आज रात्रि 10:30 पर। तो ये थी जानकारी आज के सांधिकरण प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
6: देश की सुरीली धड़कन
7: विविध भारती,
5: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
6: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
5: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
6: वीर सैनिकों की जय माला
5: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
6: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
8: सखी सहेली,
6: बॉम्बे टॉकीज और
9: सेल्यूलॉइड के सितारे,
6: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
5: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
6: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
5: मन का सुकून, दिल की आरती,
6: सुरीली संदली।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
10: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशा के खिलाफ एकजुट होकर लड़े के आह्वान करें। मुख्यमंत्री है आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवा लोगो के विमोचन करें और प्रदेश में यात्री बस के सुरक्षा व्यवस्था ला मजबूत करे बर जम्मू बस में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशा के खिलाफ एकजुट होके लड़े के आह्वान करिन है। उमन किहिन के मादक पदार्थ के कारोबार देश के सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक हित और युवा मन के भविष्य पर खतरा है। ओमन आध्यात्मिक नेता युवा और महिला मन ले ए अभियान में मिलके भाग ले के अपील करेंगे। श्री शाह ए बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेटर सेंटर यानी NCORD के

0: 10वां शीर्ष स्तरीय बैठकाला संबोधित करत किहिन। गृहमंत्री है किहिन के नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हा मादक पदार्थ ले जुड़े अपराध के जानकारी बेरा मा साझा करे बर कई ठिन ऑनलाइन पोर्टल शुरू करे है। ओमन जम्मू राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मनला ए पोर्टल मा नशा ले जुड़े मामला के जानकारी तय समय सीमा के अंदर अपलोड करे बर किहिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवा लोगों के विमोचन करें। ए मौका में बछर 2021 के आवास मेला में मकान बुक करैया हितग्राही मनला लकी ड्रा के माध्यम ले पुरस्कार माटे गिस। ए मौका में मुख्यमंत्री हा लोगो तैयार करने वाला अंशुल कश्यपला घलो प्रतियोगिता के पुरस्कार राशि के रूप में 2.5 लाख रुपया के चेक दिन। मुख्यमंत्री है उम्मीद जताइन कि गृह निर्माण मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में घलो महत्वपूर्ण भूमिका निभाही जेखर ले प्रदेश के विकास ल नवा गति मिली। ओमन बताइन कि पाछू 2 बछर में मंडल है लगभग 7388 संपत्ति के विक्रय करके 1532 करोड़ रुपया के राजस्व अर्जित करी से। कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी है बताइन कि अब कोनो भी नवा आवासीय परियोजना के निर्माण तभे शुरू होही जब पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाही जेखर ले अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम ले बाँचे जा सकी। मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव है बताइन कि भविष्य में मांग आधारित गुणवत्तापूर्ण और वित्तीय रूप ले व्यावहारिक परियोजना ऊपर विशेष जोर दे जाही। प्रदेश में यात्री बस के सुरक्षा व्यवस्था ला मजबूत करे बर परिवहन विभाग है जम्मू बस में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाना अनिवार्य कर दे है। परिवहन सचिव है बस संचालक मनला 15 दिन के भीतर बिना VLTD वाला बस में उपकरण लगाए और बंद उपकरण मनला चालू करे के निर्देश दिन है। नियम के पालन नहीं करैया वाला संचालक मन ऊपर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करे जाही। केंद्र सरकार है औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ता मल्ला बड़का राहत देवत गैर घरेलू पैक्ड LPG के आपूर्ति में जम्मू क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दे है। ऐसन में अब पश्चिम एशिया संकट ले पहली के जारी आपूर्ति व्यवस्था बहाल कर दे गए है। ये बहाली हाले में LPG आपूर्ति के स्थिति में होवत सुधार ल देखत करे गए है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी है युवा मल्ला आह्वान करीन है कि ओमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और नवा तकनीक ले डरे के बजाय ओला अपन भविष्य के निर्माण के सबले बड़का अवसर माने। श्री चौधरी है ये बात रायपुर में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज डहार ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवसर चुनौती और भविष्य के प्रभाव विषय में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में किहिन। ओमन किहिन कि आज पूरा दुनिया तेजी ले ज्ञान तकनीक और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था कोती बढ़त है। एखरे सेती युवा मनला बेरा रहत तकनीकी परिवर्तन ला समझ के खुद ला ओखर अनुरूप तैयार करना होही। ओमन किहिन कि जौन AI ला अपना ही उही भविष्य के अगुवाई करही। श्री चौधरी हा युवा मनले आग्रह करीन कि ओमन केवल नौकरी ढूंढे तक सीमित झन रहें बल्कि नवाचार और उद्यमिता के दिशा में घलो आगू बढ़ें। संग्रा विश्व स्तरीय स्टार्टअप और तकनीकी कंपनी बनाए के लक्ष्य रखें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो माचे समाचार कोती। सरकार हा पासपोर्ट आवेदन शुल्क मा बढ़ोतरी कर दे है। आवेदक मनला नवा पासपोर्ट या नवीनीकरण करे बर अब 2500 रुपया शुल्क देना होही। नवा दर 1 जुलाई ले लागू होही। नवा शुल्क संरचना के तहत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाला नवा पासपोर्ट या पासपोर्ट ला फेर जारी करे के लागत 5000 रुपया होही। पासपोर्ट के दूसर श्रेणी में घलो शुल्क में बढ़ोतरी करे गए है। प्रदेश ले माओवाद के समस्या सिराए के बाद अब सुरक्षा बल के जवान माओवादी मन कोती ले लुकाए गए जीनीस के बरामदगी में लगे हुए है। यही कड़ी में नारायणपुर जिला में टेकला के जंगल ले इंसास SLR 303 राइफल समेत बड़का मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक जीनीस बरामद

0: रेगे हे। एखर अलावा छोटे डोंगर के तोयामेटा जंगल पहाड़ी ले घलो माओवादी कोती ले लुकाए गए 24 लाख रुपया नगद राशि बरामद करेगे हे। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधरी 1 जुलाई ले लागू होवैया वीबी जीरामजी योजना ऊपर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 27 जून के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB हा बेमेतरा जिला के थान कमरिया थाना के प्रधान आरक्षक अजय लहरेला 15,000 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। ACB के टीम आरोपी ले पूछताछ करके मामला के जांच में लगे है। उन्हें ACB के टीम हा बिलासपुर में रतनपुर तहसील के लालपुर हल्का के पटवारी लघलो 25,000 रुपया रिश्वत लेवत गिरफ्तार करे है। पटवारी ऊपर नक्शा बटांकन पर रिश्वत लेके आरोप है। आज छत्तीसगढ़ समेत देश के आने आने जगह में मोहर्रम श्रद्धा और आस्था के संग मनाए जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है मोहर्रम में संदेश जारी करके हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के सुरता करीन है। उमन किहिन कि हजरत इमाम हुसैन के बलिदान सच और न्याय के रद्दा में अटिक रह के प्रेरणा देते। मोहर्रम के मौका में राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ठिन शहर में ताजिया निकाले जाते। रायपुर के करबला में घलो हजरत हुसैन के कुर्बानी ला सुरता करत आज रतिहा मजलिस यानी धार्मिक बैठका के आयोजन करे जाही। अब अप्पे से मौसम के हाल। मौसम विभाग के अनुसार अवैया 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के बाकी हिस्सा में आगू बढ़े पर अनुकूल परिस्थिति बने हुए है। उन्हें काली 27 जून ले राज्य में मानसून के गतिविधि बढ़े के संभावना है। मौसम विभाग अवैया 7 दिन तक प्रदेश के कुछ एक इलाका मन में गाज गिरे के चेतावनी घलो दे है। यही बीच बलरामपुर जिला के कंदरे गांव में गाज के चपेट में आए ले 2 युवक के मौत हो गए। बरसाले बचे खातिर ये युवक मन रुख के नीचे खड़े रहें। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग प्रदेश के आने आने नगरीय निकाय पर एल्डरमैन के नियुक्ति करे है। विभाग को तिले रायपुर और सरगुजा संभाग के 9 जिला के 62 नगरीय निकाय में 252 एल्डरमैन नियुक्त करे गए है। नगरीय निकाय में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में काम करते। उमन निकाय के बैठका में भाग लेके स्थानीय समस्या और विकास कार्य ऊपर सुझाव देते। अब थोरकुन समाचार सार में। शक्ति जिला के जोंगरा गांव में आज 2 अज्ञात मनखे मन एक युवती ले गोली मार दीन जेखर ले उखर मौत हो गए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गिन। पुलिस हा मामला के जांच शुरू कर दे है। बताया जाते कि दोनों युवक मोटरसाइकिल में पहुंचे रहीन और पता पूछे के बहाना युवती ऊपर हमला कर दिस। सुशासन तिहार के दौरान मिले शिकायत ऊपर कार्रवाई करत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला कलेक्टर है पटवारी बद्री प्रसाद साहूला निलंबित कर दे है। धमतरी जिला के मगलोर थाना क्षेत्र स्थित कपालफोड़ी गांव में तरिया में नहाए के दौरान डूबे ले 2 नोनी के मौत हो गए। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र डहारले काली 27 जून के अंबिकापुर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संभाग स्तरीय रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशा के खिलाफ एकजुट होकर लड़े के आह्वान करीन। मुख्यमंत्री है आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवा लोगों के विमोचन करीन। और प्रदेश में यात्री बस के सुरक्षा व्यवस्था ला मजबूत करे बस जम्मू बस में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:20 हुए। आइए सुनते हैं आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम के पहले भाग का प्रसारण।
2: फिल्मी गीतों के फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए। मैं आज आपके साथ हूँ आपकी रेडियो दोस्त दिनेश्वरी यादव। आप सभी श्रोता साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोता साथी शुरू करते हैं गीत संगीत का सफर आपके पसंदीदा गीत और आपके फोन कॉल्स के साथ। लेते हैं पहला कॉल। कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए।
3: राम कुशल पटेल बोल रहा हूँ, मेघा पारा लोरमी से।
2: राम कुशल पटेल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ, मेघा पारा लोरमी से।
2: लोरमी से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
3: वो है ना अंदाज फिल्म का।
2: अंदाज फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे? क्या करते हैं सर आप?
3: ये तो भी मिस्त्री काम करते हैं मैम। अपना दोस्त का नाम लेना चाहता हूँ मैम।
2: बिल्कुल लीजिए सर।

0: सहजपुर से छोटगोपा हुआ है, मनलपुर कवर्धा से सरवन साहू, मिघापारा से मनोज साहू हुआ है, रोशन देवांगन जी है, पवन सिंह जी है,
1: जी जी,
0: ये सब सुनते हुए सब कार्यक्रम में अपना भाग लेते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ ही कार्यक्रम, रायगढ़ तो बहुत सुंदर लगता है हर कार्यक्रम अपना।
1: आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं सर?
0: हाँ, सब कार्यक्रम सुनते हैं।
1: कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है? कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
0: तो हर कार्यक्रम अच्छा लगता है मैम अपना, सबसे अच्छा तो चिंतन लगता है सुबह का।
1: ठीक है सर, हम आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं।
0: हाँ मैम।
1: फोन करने के लिए धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद धन्यवाद।

0: ग्राम सरगुमरीगुड़ा जिला कालाहांडी ओडिशा से।
1: सर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: मुझे गाना सुनना है, फिल्म का नाम है तेरे नाम, गाने के बोल है क्यों किसी बसा के बदले बसा नहीं मिलती।
1: तेरे नाम का गीत सुनना चाहेंगे आप, कौन सा गीत?
0: क्यों किसी बसा के बदले बसा नहीं मिलती।
1: क्या करते हैं सर आप?
0: मैं कुछ नहीं करता हूँ मैडम, मैं ब्लाइंड हूँ तो घर में बैठा रहता हूँ।
1: जी जी, आपके उधर बारिश हो रही की नहीं?
0: बारिश थोड़ी थोड़ी बारिश हो रहा है, बिल्कुल हल्की हल्की।
1: जी सर, लीजिए फिर आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं।
0: ठीक है, नमस्ते।
1: फोन करने के लिए धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: हेलो, कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए। मैं
1: जी, आपका बहुत स्वागत है मैडम।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं विकासखंड तमनार मिलुपारा जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: संतोष सिरार।
0: संतोष जी, क्या आप हमारे
1: हाँ
0: कार्यक्रम सुनते हैं?
1: हाँ सुनता हूँ, कई बार सुन चुका हूँ कार्यक्रम।
0: कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: इसमें लीजिए फिर सुनिए, और शाम को 7 बजे चौपाल और चित्रपट संगीत और यू आई।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप, कौन सी फिल्म का?
1: उदित नारायण का गाया हुआ गाना है, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी।
0: क्या कर रहे हैं सर आप?
1: मैं दृष्टि बाधित बोल आया हूँ।
0: जी जी बिल्कुल, आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी योगेश जांगड़े सिरवा बांधा बेमेतरा से।
0: योगेश जी?
1: हाँ जी।
0: बेमेतरा से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, पास में ही सिरवा बांधा गांव है।
0: क्या करते हैं सर आप?
1: हमारा खेती बाड़ी का काम है।
0: बिल्कुल। और बारिश बारिश कैसे हो रही है आपके यहाँ?
1: बारिश तो बिल्कुल भी नहीं है अभी तक।
0: खेती का काम भी अटक गया होगा ना ऐसे में तो?
1: हाँ जी हाँ जी, शुरू भी नहीं हो पाया है, जोताई बस हुआ है अभी।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मेघारे मेघारे सुनवा देंगे, फिल्म है प्यासा सावन।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं हम। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए।
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं सुरेश कुमार पारसी बोल रहा हूँ। मैं वार्ड क्रमांक 20 कुर्मी पारा बेमेतरा से।
0: क्या करते हैं?
2: बहुत बढ़िया मैम, मैं तो जैसे मैं सारथी हूँ ऐसा मेरा काम भी सारथी का है मैम। मैं ड्राइवर हूँ।
0: जी जी।
2: और वाहन चलाता हूँ मैम, बाहर बाहर सब जाते रहता हूँ अदर स्टेट। और अभी भीषण गर्मी को देखते हुए अभी तो कहीं जाने का मौका नहीं मिला है अभी मैम।
0: जी, आप रेडियो सुनते हैं?
2: जी रेडियो सुनता हूँ, आकाशवाणी रायगढ़ में मेरा पत्र भी जाते रहता है और कभी कभार सुनने को मिलता है मैम, क्योंकि मैं हर हमेशा सफर में रहता हूँ। और फोन फोन के माध्यम से आप लोगों से जुड़ भी लेता हूँ मैम।
0: जी जी।
2: अभी गर्मी बहुत तेज हो गई है, बारिश नहीं आ रही है, अभी खेती बाड़ी की सब काम व्यस्त भी है मैम।
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: जी मैम, मैं प्यासा सावन का है ना वाले जो गीत है मैम।
0: जी बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सारथी परिवार की ओर से, आपके यूनिट और आपके पूरे परिवार को मैम।
0: बिल्कुल, धन्यवाद
2: धन्यवाद।

0: अभी आप सुने थे फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के पहले भाग का प्रसारण FM 100.7 MHz पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का

0: प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी हर वर्ग के बीच जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी।
6: यूसीसी लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर जज मैडम देसाई हैं, उनके अध्यक्षता में गठन हुआ है। अब वो लोगों के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यूसीसी लागू होगा।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और महिलाओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
7: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
5: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए गैर घरेलू पैक्ड LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस तरह अब पश्चिम एशिया संकट से पहले जारी आपूर्ति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। यह बहाली हाल ही में LPG आपूर्ति की स्थिति में हुए सुधार को देखते हुए की गई है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि कर दिया है। आवेदकों को नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। नई शुल्क संरचना के तहत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। पासपोर्ट की अन्य श्रेणियों में भी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज

नवा रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवीन लोगों का विमोचन किया। इस अवसर पर वर्ष 2025 के आवास मेले में मकान बुक करने वाले हितग्राहियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगो तैयार करने वाले अंशुल कश्यप को भी प्रतियोगिता की राशि के रूप में 2.5 लाख रुपये का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि गृह निर्माण मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2 वर्षों में मंडल ने लगभग 7,388 संपत्तियों का विक्रय कर 1,532 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि अब किसी भी नई आवासीय परियोजना का निर्माण तभी प्रारंभ होगा जब पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम से बचा जा सके। मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने बताया कि भविष्य में मांग आधारित गुणवत्तापूर्ण और वित्तीय रूप से व्यावहारिक परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के कई विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की है। विभाग की ओर से रायपुर और सरगुजा संभाग के 9 जिलों के 62 नगरीय निकायों में 252 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। नगरीय निकायों में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। वे निकाय की बैठकों में भाग लेकर स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर सुझाव देते हैं। प्रदेश में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को 15 दिनों के भीतर बिना VLTD वाली बसों में उपकरण लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियम का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI और नई तकनीकों से भयभीत होने के बजाय उन्हें अपने भविष्य के निर्माण का सबसे बड़ा अवसर माने। श्री चौधरी ने यह बात रायपुर में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवसर चुनौतियां और भविष्य का प्रभाव विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने बेमेतरा जिले के थान खमरिया थाने के प्रधान आरक्षक अजय लहरे को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB की टीम आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं ACB की टीम ने बिलासपुर में रतनपुर तहसील के लालपुर हरका पटवारी को भी 25,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पटवारी पर नक्शा बटांकन के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार 1 जुलाई से लागू होने वाले VVG Ram Ji योजना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 27 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश से माओवाद की समस्या खत्म होने के बाद अब सुरक्षा बल के जवान माओवादियों द्वारा छिपाई गई सामग्रियों की बरामदगी में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के टेकला के जंगलों से इंसास SLR 303 राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इसके अलावा छोटे डोंगर के तोयामेटा जंगल पहाड़ी से भी माओवादियों द्वारा छिपा कर रखी गई 24 लाख रुपये नकद राशि बरामद की गई है। आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर संदेश जारी कर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में ताजिए निकाले जा रहे हैं। रायपुर के करबला में भी हजरत हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए आज रात मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। वहीं कल 27 जून से राज्य में मानसून की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 7 दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। इस बीच बलरामपुर जिले के कंदरी गाँव में

0: काशी बिजली की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए ये युवक पेड़ के नीचे खड़े थे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी रायपुर की ओर से कल जगदलपुर में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष, नक्सलवाद से विकास और विश्वास की ओर बढ़ता बस्तर रखा गया है। सक्ती जिले के जोंगरा गांव में आज दो अज्ञात लोगों ने एक युवती को गोली मार दी है, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि दोनों युवक मोटरसाइकिल पर पहुंचे थे और पता पूछने के बहाने युवती पर हमला कर दिया। सुशासन तिहार के दौरान मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला कलेक्टर ने पटवारी बद्री प्रसाद साहू को निलंबित कर दिया है। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र स्थित कपालफोड़ी गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई। जांजगीर के प्रकाश इंडस्ट्रीज में काम करने के दौरान ऊंचाई से गिरकर एक ठेका मजदूर की मौत हो गई। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कल 27 जून को अंबिकापुर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में निजी कंपनियों द्वारा करीब 2000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। प्रदेश में परिवहन विभाग ने बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। आइए सुनते हैं आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के दूसरे और शेष भाग का प्रसारण।
1: कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए।
2: हाँ डॉक्टर जी नमस्कार।
1: नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, रायगढ़ आकाशवाणी का नियमित और पुराना श्रोता।
1: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
2: हम तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं मैडम जी, लीजिए फिर सुनिए सुनते हैं, हेलो संगी हेलो संगवारी और क्या बोलते हैं लोक रंजनी कार्यक्रम, युवानी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: आपके तरफ बारिश हो रही है कि नहीं?
2: नहीं मैडम जी, अभी तो बारिश नहीं हो रही है, क्या है बदली छाया रहता है लेकिन बारिश तो अभी शुरुआत नहीं हुआ है, थोड़ा एक दो दिन पहले थोड़ा थोड़ा गिरा था पानी यहाँ पर। जी जी, आप कौन बोल रहे हैं मैडम जी?
1: मैं डिडनेश्वरी यादव बोल रही हूँ सर।
2: जी जी जी, और बताओ
1: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
2: आज राजा सिन्हा का गीत सुनवा दीजिए मैडम जी, मेरे को चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, ये वाला गीत।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी दिल से धन्यवाद और आकाशवाणी रायगढ़ परिवार को भी दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ मैं।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, लीजिए फिर सुनिए।
1: हेलो,
0: कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए।
1: हाँ हाँ मैडम, उड़ीसा से बोल रहा हूँ।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आपका खाली यही प्रोग्राम सुनते हैं मैडम। हम लोग तो हमारा इधर उड़ीसा में जो है उसको प्राय सुनते हैं, और आप लोग का जो हिंदी का प्रोग्राम रहता है वो सब सुनते हैं।
0: जी जी, फिल्म का गीत बताइए।
1: अच्छा, ये मदर इंडिया फिल्म का देखिए, तो दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।
0: मदर इंडिया का?
1: हाँ, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए।
1: हेलो दीदी जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: माखन वर्मा बोल रहा हूँ दीदी जी।
0: माखन वर्मा जी बोल रहे हैं
1: जी दीदी।
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: आपके आकाशवाणी रायगढ़ के सभी कार्यक्रम सुनते हैं दीदी जी।
0: बिल्कुल। और पत्र लिखते हैं कि नहीं, ईमेल करते हैं कि नहीं, ये बताइए।
1: ईमेल करते हैं दीदी, सभी कार्यक्रम में अनुरोध गीत है, हमारे लोकगीत है, आपकी फरमाइश है।
0: रेडियो सुनने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं वो बताइए।
1: क्या है कि दीदी, रेडियो सुनने से दीदी सूचना ज्ञान, सूचना मनोरंजन और ज्ञान वर्धन चीज मिलते हैं दीदी। और तुम्हारे लिए फिल्म का दीदी, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है मुझे ऐसा है।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं हम। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माखन जी।
1: आपको भी हमारे फोन कॉल सेवन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। कौन दीदी बोल रहे हैं?
0: मैं डिडनेश्वरी यादव बोल रही हूँ
1: जी दीदी। मैं पहली बार बात हो रहा है दीदी आपसे।
0: बिल्कुल, पहली बार ही हम आए हैं इस प्रोग्राम में
1: जी दीदी।
0: फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: आपको भी हमारे फोन कॉल सेवन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी।

0: हेलो, कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए।
1: हेलो जी, सुनिए।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: हम बोल रहे हैं श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से, लक्ष्मण वाधवानी, श्रीमती विमला वाधवानी, श्रीमती दिशा वाधवानी, श्रीमती सुमरण वाधवानी। ये सब बहुत खुशी और आपका हर्ष ये सब जाती है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिनों बाद हमारा आप रिंग उठाए हैं।
0: हमें भी बहुत खुशी हो रही है, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। आप हमारे पुराने श्रोता हैं, आपका फोन कॉल्स हमारे पास आया है इतने दिनों बाद।
1: हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी छाल उतर जाता है, कभी दूसरे काम में चले जाते हैं। अगले हफ्ते में सवा चार साढ़े चार बज गया, मित्रों का नाम लेते हैं
0: जी। बिल्कुल,
1: हाँ, श्रीवास है दुर्गा चौक से। हाँ, उसके बाद में हमारा मित्र बोलते ही हमारा नाम लेते रहो, आपका रखते रहता है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, लाल टंकी से चेतन दास सिंधी, और उसके बाद में है वो जेल रोड से निषाद, नाम देव निषाद, और लास्ट में है आपका चेतन नगर चौक से घड़ी वाला प्रकाश घड़ी वाला।
0: सुनना चाहेंगे लक्ष्मण वाधवानी जी?
1: लव इन टोक्यो, मुझे तुम मिल गए हैं।
0: आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं लक्ष्मण वाधवानी जी।
1: हाँ,
0: फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद।

0: श्रोता साथियों, कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में आज तकनीकी सहयोग रहा भूपत सिंह धुर्वे का, प्रस्तुति सहयोग था रामविलास पटेल का, प्रस्तुतकर्ता थे रवि आनंद। अब कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए से अपनी रेडियो दोस्त दिनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुने थे फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के दूसरे और शेष भाग का प्रसारण। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 7:20 हुई, आइए सुनते हैं किसान भाई का कार्यक्रम चौपाल।

0: तीनों कॉलेज में।
1: चौपाल के बेड की मैं सब वो संगी संगवारी दाई बहनी मल्ला भंशी के राम राम भैया। और शुक्रवार के दिन है, तारीख हवे 26। आओ बेड की बैठे हन तो चर्चा करबो बहुत सारा चीज है, लेकिन सबले बड़का चर्चा है मौसम के। भैया हो कहीं पानी है गिरत है कहीं नहीं गिरत है, समस्या बढ़त है। काबर खरीफ के जो मौसम होते वो हर केवल यहाँ के जो खरीफ के खेती किसानी के बूता होते वो हर मौसम आधारित होते। और पानी ऊपर ले गिरते 16 आना गिरते तो खेती किसानी के बूता 16 आना होते। पानी हर कहीं गिरत है कहीं नहीं गिरत है तो एकर ले किसान मन थोड़ा सा डर में है, पानी नहीं गिर ही तो का हो ही। तो बुआई के बूता हर तो चलत है खुर्रा बोनी टाइप के, और पानी थोड़े से भी गिरत है तो जोत फांद के बुआई के बूता हर हो जाते, लेकिन

बड़ डरा थे काबर पानी नहीं लगी तो रोपा के बूता हर ठीक से नहीं हो पाए। ओकर लिए ओकर बर हमन ला चाहिए कि भाई जहाँ व्यवस्था है सिंचाई ऊंचाई के साधन है तो वहाँ रोपा लगा सकथन। अब मान लो सिंचाई के साधन नहीं है और केवल ऊपर के पानी के भरोसा में हम रहो तो हो सकत है हमला नुकसान हो। ओकर बर खुर्रा बोनी के हिसाब ले हम मतलब बुआई ले तो कर देना चाहिए। पानी नहीं गिरे थे ओकर बाद उमस और गर्मी हर भी बाढ़ गए है और भैया हो अचानक से पानी गिर देते अचानक से छोड़ देते और मस्त धूप करते माने मौसम हर बदलत रहते उसने में सेहत खराब होए के बहुत ज़्यादा संभावना रहते। तो अपन ला सेहत के प्रति भी गंभीरता से ध्यान देना है लोग लड़का मन के प्रति भी गंभीरता से ध्यान देना है। काबर के पढ़ाई लिखाई शुरू हो गए है स्कूल खुल गए है लोग लड़का मन स्कूल जाना चालू कर दे हैं तो वो हिसाब ले हम ला अपन के व्यवस्था ला बना के रखना है। पालक मन ला बहुत सतर्क और सावधान रहना है अभी के समय हर थोड़ा सा कठिन रहते। भैया हो चर्चा आज करबो आज की बात में कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण अधिक लाभ का आधार जैव विविधता के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का उपयोग वर्ष भर हरे चारे के लिए चारा उत्पादन का वार्षिक कैलेंडर अपनाएं। चर्चा करबो राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज जयंती है आज खेत बचाओ अभियान तो चर्चा करबेच करबो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रताड़ना के शिकार लोगों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय दिवस सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की सहायता के लिए पीएम राहत योजना तो ये सब के चर्चा करबो भैया हो गीत गोविंद घला हो ही और सबले बड़का ये है कि कृषि उत्पाद मन के प्रसंस्करण हमन खेती किसानी के बुताला करथन हमार करा बहुत सारा उपज रथे उपज रथे माने जो हमन उत्पादन लेथन उत्पादन करथन तो वो हर होते का कि बहुत सारा चीज़ है। अब जैसे साग सब्जी के बूता है साग सब्जी के बूता हर सड़े वाला है बोला लंबा समय तक हमन सुरक्षित नहीं रख सकन तो ऐसने मन के प्रसंस्करण करके हमन वो मतलब सुरक्षित रख सकथन और ओकर ले अच्छा आमदनी घला हमन ला मिलते। कारण कि जैसे अब आलू है आलू हर तो लंबा समय तक चलते चले बर लेकिन आलू के चिप्स बनाते और भैया हो आप मन देखे हुई है दुकान मन में टंगाए रहते आलू के चिप्स हर और ओकर पैकेट हर कितना खूबसूरत रहते तीन दाना चार दाना छः दाना रहते वो में माने छः पीस सात पीस पाँच पीस और ओकर कीमत 10 ले 15 रुपया 20 रुपया अलग अलग हिसाब ले रहते तो वो हर दिखे में ही खाली पैक रहते उनमें भीतर में हवा भरा रहते और मस्त है कस लाख थे माने दिखे में वो आधा किलो है कस लाख थे लेकिन वो हर मुश्किल से 5 ग्राम 7 ग्राम रहते तो वो हर दिखे में अच्छा लागते ओकर बर वो हर बिकते बढ़िया ओकर प्रसंस्करण वही हरे आलू ये और आलू के किलो है 20 ले 25 रुपया और मान लो एक ठी आलू हर 8 थी 10 थी ओकर बनत है चिप्स बनत है तो स्वाभाविक है कि एक ठी आलू हर हम ला 10 रुपया दे सकते हैं ई हर प्रसंस्करण है। इसने प्रकार के हमन जैसे अचार है बड़ी है पापड़ है उरीद हमर करा पर्याप्त मात्रा में होते तो उरीद के हमन केवल गोटा बेचबो तो उसका अच्छा हमला कीमत नहीं मिले लेकिन वही ला बरी बना के बेचबो या दार बना के बेचबो तो ओकर कीमत हर बाढ़ जाते हमला। उसने प्रकार से हमन जैसे अब धान है तो धान ला चाउर बना के हमन बेच सकत हन गेहूँ है तो आटा बना के बेच सकत हन धान के मुर्रा चाउर बना सकत हन हमन ओला उसन के उसना चाउर बना सकत हन तो प्रसंस्करण हर कुछ नवा तकनीक नो है हमन करथन हमेशा तो वो चीज़ ला हमन ला करना है प्रसंस्करण करना है। प्रसंस्करण कर ले जो चीज़ रहते जैसे टमाटर के बात है तो टमाटर में टमाटर ला हमन ज़्यादा समय तक नहीं रख सकन फ्रिज में भी रखबो तो 2 दिन 4 दिन ओकर बाद खराब हो लगते ओहर तो ओकर हमन जैसे टोमेटो सॉस मिलते देखें पैकेट में बढ़िया रहते।

ओकर अब अलग अलग पैकेजिंग के एक वो रहते तरीका रहते, ओला सीखे पर भी लागते, तो ओकर ले हमला ज़्यादा हो रहते। अब ओकर मूल्य संवर्धन यानी हमला ज़्यादा प्रसंस्कृत जो उत्पाद रहते ओकर ले ओहर सीधा उपभोक्ता मन के थाली तक पहुँचते, ओकर बरोकर कीमत हमला ज़्यादा मिलते। टमाटर मान लो लेबो हमन तो ओला धोबो फिर काटबो फिर बनाबो तब खाबो हमन, लेकिन जो टमाटर के सॉस रहते ओला हमन ढक्कन ल खोलेन आ निकाले ना खान के चालू कर देन, तो ओकर बर ओहर प्रसंस्करण के जो चीज रहते ओहर थाली तक पहुँचते, ओकर बर ओहर हमन ला ज़्यादा मुनाफा देते। दूसरा चीज एकर ले हमन बिचौलिया मन ले भी बाँच सकथन। बाजार बाजार में हमन देखथन कि बोली लगात रहते, तो कुछ चीज़ हर ज़्यादा दिखते, कुछ सामान हर ज़्यादा दिखते, तो ओकर कम रेट लगाते ओमन, आउ कम रेट लगाते हैं तो हमन के जो उत्पादन लागत रहते ओहर भी नहीं मिल पाए। तो उसने हिसाब ले हमन ला प्रसंस्करण करना है, एकर ले हमन ला बर्बादी जो होते ओला भी रोक सकथन। लगभग भैया हो 12% तक कृषि उपज ह खराब होए के संभावना रहते, सब्जी होइस फल होइस दूध होइस और अन्य प्रकार के होइस, तो ये प्रसंस्करण के जरिया ले वो उत्पाद मन ला हमन ला सब्जी फल दूध वो मन ला हमन सुरक्षित राख सकथन, संरक्षण कर सकथन। सुरक्षित राखबो और प्रसंस्करण करबो तो ओकर दाम भी हमन ला ज़्यादा मिलही। जैव विविधता के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का उपयोग भैया हो, अभी के स्थिति में जैसे खेत बचाओ अभियान चलत है, खेत बचाओ अभियान पूरा देश में चलत है। अब पूरा देश में ओकर बर चलत है कि अभी के स्थिति में हमन के जो खेत है ओकर माटी के सेहत हर खराब हो गए है, और माटी के सेहत हर खराब होए है माने स्वाभाविक है कि वो हर हमला नुकसान कर सकते, माने जोन जतका हमला उत्पादन में चाहिए उतका उत्पादन हमला नहीं मिले। ओकर बार यह राष्ट्रव्यापी पहल है जेकर उद्देश्य माटी के उर्वरता के रक्षा करना, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग ल कम करना और प्राकृतिक खेती ला बढ़ावा देना। यह अभियान ला मुख्य रूप से भैया हो किसान मन वैज्ञानिक कृषि पद्धति और टिकाऊ विकास के लिए जागरूक करे खातिर बर चलाए जाते। तो हमारे किसान संगवारी मन तो करते थे बुताला, ऐसे नहीं है कि नहीं करते हैं, तो उसने बुताला हमला करना है। वर्ष भर हरे चारे के लिए चारा उत्पादन का वार्षिक कैलेंडर भैया हो, गाय गरुआ के बुताला करथन हमन, पशुपालन के बुताला करथन और खेती किसानी में तो जरूरी छे दोनों हर, खेती किसानी और पशुपालन के बूता हर एक दूसर के पूरा के, तो ओ मन के चारा के हमला व्यवस्था करना है। तो 4 महीना खरीफ सीजन में तो हो जाते, रवि सीजन में भी हो जाते, लेकिन जब जायत फसल के समय आते तो उस समय दिक्कत होते। ओकर बार हमला वार्षिक चारा जो हर हमला 4-4 महीना में, 4-4 महीना में ओकर उत्पादन हो जाए और हमार गाय गरुआ मन पर व्यवस्था हो जाए। हरा चारा ले भैया हो पशु मन ला ओमन के सेहत ठीक रहते, दुधारू पशु मन अच्छा दूध देते, ओमन के प्रोडक्शन अच्छा होते, सेहत ठीक रहते, तो ये सब चीज़ के व्यवस्था हमला करके रखना है। साल भर के लिए चारा उत्पादन के जो एक तैयारी है ओला हमला करके रखना है। तो भैया हो हरा उत्पाद जो चारा है उत्पादन ओकर वाला करना है, ओकर बार हमला एक व्यवस्था बनाना है कि साल भर में कैसे हमला चारा के व्यवस्था ला हमन कर सकथन। भैया हो कृषि आज के हमार अब बेरा हो गए है, तो कृषक प्रश्न मंच के कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण करेले का लाभ होते, कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण करेले का लाभ होते, आप मन अपन चिट्ठी पत्री के माध्यम ले जवाब ला भेजिया। और बेरा हो गए है आज के हमर क्रम हमर लोकगीत के, तो चला सुनबो हम हमर लोकगीत फिर चर्चा ला आगू करबो। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो, आज है शुक्रवार और चौपाल के बेटकी में ये दिन क्रम होते हमर लोकगीत जो नर होते ईमेल और आप मन के मया दुलार ले लिखे चिट्ठी पत्र ले आधारित। आकाशवाणी के मंच में मैं बंसी आप मन के हार्दिक स्वागत करत हूँ। संगवारी हो, लोकगीत हमर माटी के महक, हमर संस्कृति के पहचान और हमर पुरखा मन के धरोहर आए। ये गीत मन में गंवई गाँव के जीवन, खेती किसानी, तिहार बहार, रोटी पिठा, मया दुलार और लोक परंपरा के रंग समाये रहते। तो चलो एक क्रम के शुरुआत करथन एक ठन सुघर लोकगीत के संग, जिला सुने पर हमला फरमाइश कर रहे हैं कलाकार सेल।

साहू के कबीर भजन, संतों कर ले गुरु के भजन, गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद ले जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई, मोतीम बाई मानिकपुरी, ग्राम फुलजर घटारानी जिला गरिया बनले, ओगेश्वर साहू, डोमेश्वरी साहू, यामिनी साहू, मुस्कान साहू, हर्षिता साहू कोहका भिलाई ले, उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल, धमधा ग्राम सुखरी कला ले अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल, खम्हरिया बिलासपुर ले साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, धमनी राजीम ले समयलाल धीवर, मुन्नी धीवर, गोविंद धीवर, ममता धीवर, कुणाल धीवर, युवांश धीवर, हटोत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल।

संगवारी हो गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होए, ये मन हमर मन के भाव और संवेदना के सुंदर अभिव्यक्ति घलावाए। कभू खुशी के संग तो कभू गम के, कभू पुराना याद मन ला ताजा करे बर तो कभू अपन स्नेही मन तक प्रेम और अपनापन पहुंचाए बर गीत मन एक सुघर माध्यम बन जाते। तो ले सुनाओ ये गुरतुर गीत जौन ला सुने बर हमन ला अपन माया दुलार भेजे हैं। तुकाराम निर्मलकर के गीत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया करत है खेती किसानी। करही भदर से देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मी सोनवानी, गीतिका दोनी, पुरुषोत्तम निर्मलकर, संतोष सोरी, रेवती सोरी, लीलाधर सोरी, लक्ष्मण सोरी, नयागंज वार्ड भाटा पारा छत्तीसगढ़ ले विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा साहू, हर्ष साहू, कुमकुम साहू, गेश्वरी साहू, हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव, अडार नान घाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी भूपेश, दीपेश वर्मा, कर्मा चौक लोहारी डीह जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी लालिमा साहू, खुशांत साहू, निशांत साहू, रोहासी पलारी से श्याम साहू, युवराज साहू।

संगवारी हो जिंदगी के भाग दौड़ में संगीत एक ऐसा साथी आए जैन मन ला सुकून, जैन हर मन ला सुकून पहुँचाते और नवा ऊर्जा भर देते। तो लेवा सुना अपन पसंद के गीत जेकर बार ईमेल और चिट्ठी लिखे हैं अमन ला। नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेन्द्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, रायगढ़ वार्ड नंबर 3 से रोहित, जयलक्ष्मी माँ बमनेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव, राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, वार्ड 34 कन्हारपुरी राजनांदगांव मंदिर, मंथिर दास साहू, कुमारी बेविका साहू, संतोष कुमार साहू, कुमारी देवी साहू, चमन लाल साहू, दीपाली देवी साहू, गुणांश देव साहू, ग्राम पुतकी कला कवर्धा से राधे श्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे।

अब बर्थन आगू फरमाइश कति ले फरमाइश आए है। रानी गांव नगरी जिला धमतरी ले खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू, माँ महामाया चौक मेघापारा चिल्फी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेकलाल पटेल, हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीखराम देवांगन, रजनी देवांगन, प्रियंका देवांगन, रेणु देवांगन, नानघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, मदनपुर कवर्धाले श्रवण कुमार साहू, योगेश कुमार साहू, राहुल साहू, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले राम दुलारी प्रजापति, राम शरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकला शशिकांता प्रजापति, दतरंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति छाया बंछोर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन, बाजार पारा बेमेतरा से भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, खट्टी महासमुंद से सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, भूपेंद्र साहू, सुहद्रा साहू, रोहण यादव, राजेश निषाद, कमल साहू, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेश नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिला उत्कर्ष नेताम, नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव, योगेश यादव, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पप्पू, छोटू सेन, लता, पूजा सेन, खुशी सेन, बेमित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटी से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, रुआ बांधा सनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन।

संगवारी हो हमर लोक गीत के आखिरी पड़ाव मेहन हमन, तो सुनो विक्रम के आखिरी गीत जिन ला पसंद करे हैं। रॉबर्टसन दर्रा मुड़ा से लंबोदर प्रसाद सदाफर पटेल फैलेंद्र कुमार तेज कुमार तेज राम तरुण कुमार सुरेंद्र कुमार पीयूष कुमार हेमंत कुमार राम ख्याल तुलाराम आर्यन रूप बसंत देवा सदाफर पटेल पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया बेबी आरजू जाजोरिया रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा करुणा वर्मा ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू भूरी साहू रेखा मोतीलाल साहू ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रयंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे ग्राम भर्री टोला डोंडी बालोद से नमित कुमार गौतम पिहू नीतू मुरली गौतम राजीव गांधी नगर रायगढ़ से मनोज कुमार यादव सोनम विशाल ज्योति गणेशी राधी रामलाल राजो फूलबाई यादव साक्षी यादव भाई रामचंद्र जी देवांगन श्री घासी मामा सलाम ग्राम पटेल कुमारी सुनैना पिंकी गीता यश प्रियांश तन्वी नीता चंद्रवती युवराज भागवत देवांगन पदुम देवांगन और समस्त देवांगन कुटुंब परिवार कोष्टापारा जुड़वा चौक सरंगपाल ले देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री भाटापारा से दान सिंह रावत दानू पद्मिनी रावत शुभम सौरभ रावत भूरसुदा छत्तीसगढ़ से भगवानी संतोषी चंद्र प्रकाश नेहा गजेंद्र चिराग सेन हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव मानस शांति वैष्णव ऋचा गायत्री वैष्णव भीषम दास मानिकपुरी जेल रोड रायगढ़ थे भाई नरेंद्र कुमार तिवारी गेंदलाल श्रीवास संतोषी श्रीवास हटरी चौक बिलाईगढ़ थे खीखराम देवांगन रेजू देवांगन रजनी देवांगन पिंकी देवांगन गौशाला पारा रायगढ़ थे विनोद कुमार गुप्ता रीना नेहा यशु और अंशु गुप्ता श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ थे लक्ष्मण बाधवानी श्रीमती विमला बाधवानी मास्टर हर्ष खुशी और शुभम बाधवानी यहाँ से कन्हैया लाल तीर्थानी।

तब भैया हो सुनत रहन आप मन के फरमाइशी लोकगीत। अब बेरा हो गए है जाए के, तो अपन रेडियो संगवारी बंसील देव विदा। फिर मिलबो अगले सप्ताह यही बेरा। लिखत रिहा चिट्ठी पत्री बनाए रिहा मया दुलार। तब तक के लिए राम राम जय जोहार।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है? क्या हुआ?
1: हाँ, फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: तो संदेश के पहली सुनत रहन भैया को हमार लोकगीत आप मन के फरमाइश सही मेल आधारित होते कर्म और हमार भैया हो राजर्षि छत्रपति साहू महाराज आज ओकर जयंती है। भैया हो हमार देश ला महान विभूति मन के देश कहे जाते। यहाँ ऐसे ऐसे विभूति मन पैदा हुए हैं जोन मन के कोई सानी ही नहीं है। इसने एक जन महान विभूति हमें राजर्षि छत्रपति साहू महा

राज ला आज हमन याद करत हन। भैया हो राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती हर साल 26 जून के दिन मनाए जाते हैं। ये दिन ला महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय दिवस सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाए जाते हैं। साहू जी महाराज

0: 20 जुलाई 1902 में कोल्हापुर रियासत में शिक्षा और सरकारी नौकरी में पिछड़ा और दलित वर्ग मन पर 50% आरक्षण लागू करे रहिन। छुआछूत और जाति प्रथा के विरोध करे के खातिर ओमन अंतर जातीय विवाह ला प्रोत्साहित करिन और दलित मन के सार्वजनिक कुआं और तालाब के इस्तेमाल के अधिकार दिलाए रहिन। ओमन एक दलित गंगाराम कामले के दुकान में खुद चाय पी के जातिवाद ला कड़ा चुनौती दे रहिन। जोन शिक्षा के अधिकार ला भी हमन उपयोग करत हन भैया हो, शिक्षा के अधिकार ला राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज है 1917 में अपन राज्य में प्राथमिक शिक्षा ला निःशुल्क व अनिवार्य करे रहिन। ओमन गरीब छात्र मन बर कई ठन फ्री छात्रावास भी बनवाए रहिन। ओमन देवदासी प्रथा और बाल विवाह ला रोक लगाइन, संगे संग विधवा पुनर्विवाह ला कानूनी मान्यता दे रहिन। ओकर पर भी आज 26 जून तो मल्ला हमन याद करत हन। बेरा हो गए है भैया हो आज किसान के बातचीत सुने पर। बकरी पालन सतत आय के माध्यम ये विषय ले रायगढ़ ब्लॉक के सियारपाली गांव के बकरी पालक अयूब खान जी से मोर बातचीत है, ओला सुन ले फिर चर्चा ला हमन आगू बढ़ावो। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आकाशवाणी के हमर जो एक प्रयास रथे कि जो अलग अलग किसान रथे, कोई सब्जी उत्पादक रथे, कोई मछली पालक रथे, कोई पशु पालक रथे, तो मन से हमन चर्चा करथन। विभिन्न विशेषज्ञ मन घला हमर संग में आते हैं पहुना बन के और चर्चा करथन और मन के जो अनुभव रथे वाला हमन आकाशवाणी के माध्यम ने चौपाल के बैठकी में साझा करथन। तो आज हमर संग में एक ऐसे पहुना है जो मन लंबा समय से बकरी पालन ला करत हैं और ऐसे भी बकरी पालन ला करते हैं उमन बकरी के दूध के भी व्यवसाय करते हैं। तो आज ओमन से हमन जानबो कि ओमन के अनुभव का है, कतक लाभ होते, कब ले बूता ला करत हैं और आने वाला समय में एकर का भविष्य है। तो भैया सबले पहले तो हमार अपना राम राम है और हमारे बैठकी में आपके स्वागत है। सबले पहले आप अपन के नाम बताहा।
1: मुन्ना अयूब खान है, ग्राम सियालपाली, पोस्टल लोइंग, जिला रायगढ़।
0: तो खान जी ये बताहा कि आप जैसे आपके घर में देखा था नामन के बड़े बड़े बकरी है, बोकरा है, ये मतलब एवन का प्रजाति के हैं और कब ले आप कर पालन पोषण?
1: प्रजाति ला मैं जान नहीं पात हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन बकरी बड़े साइज के है और दूध वाली बकरी है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: तो आप बकरी पालन ला कब ले कर रहा था?
1: मैं ला समझ जा मेरा 9-10 साल हो रही और मैं तब ले मैं बकरी पालन पाला था।
0: अच्छा, आपके उम्र 9-10 साल रही तब ले आप बकरी पालन कर रहा था?
1: हाँ, बकरी चला था।
0: माने स्कूल के समय ले कहा था?
1: हाँ, माने पढ़े छोड़ दे हमें।
0: हाँ,
1: और बकरी के चालू में चला था।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: मतलब एक लंबा समय हो गया कहा था।
1: हाँ,
0: मोटा मोटी 50-60 साल हो गए आप लोग।
1: हाँ,
0: बकरी पालन कर।
1: हाँ, बकरी पालन।
0: तो ये में कतक फायदा है और का हिसाब लेकर पालन पोषण करता हमन?
1: एक फायदा तो देखा दूध में भी फायदा है जाना। और बकरी जब भी चाहे बेच सकत है। हाँ, उसमें बहुत फायदा है।
0: माने नगद है?
1: नगद है,
0: जब भी पैसा की जरूरत है।
1: जरूरत है माने 5,000 के तो 4,000 में दे दे पछे, लेकिन तुरंत मतलब
0: तुरंत पैसा मिल जाए। हाँ, पैसा कभी कोई दिक्कत
1: नहीं
0: है। आर्थिक रूप से मतलब अपन हमेशा एक तरह से ये रहते कि जेब खाली नहीं रहे।
1: जेब खाली नहीं है।
0: हाँ हाँ, हाँ, हाँ। अभी कतक का बकरी है आपके पास?
1: 18 बकरी है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: और बोकरा
1: वो मैं एक थी है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: बकरी मन के दूध के जैसे अभी बात करत रहा।
1: हाँ,
0: तो दूध तो होते का कि हमन सुने हैं लेकिन ओकर उपयोग का होते वाला हमन नहीं जानन है ना। तो अभी कतक दूध होते या ओकर उपयोगिता का है कैसे कत?
1: अभी दूध नहीं हो बस बकरी मन ला।
0: अच्छा,
1: अब गाभिन होगी ना।
0: हाँ हाँ,
1: दूध नहीं देते।
0: हाँ,
1: दूध हमारे यहाँ 400-500 रुपये किलो चलते हैं
0: बकरी दूध।
1: बकरी दूध।
0: अच्छा, और कौन ले जाते?
1: सब रायगढ़ वाले आ जाते हैं।
0: अच्छा,
1: हर बीमारी में बकरी दूध काम आते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, अभी जो कोरोना हो रही है ना, 100 ग्राम ला 500 रुपया।
0: अच्छा,
1: दूध।
0: हाँ
1: हाँ, लेकिन हमन वो हिसाब से नहीं लें जो हिसाब चलत है, माने हमन उस हिसाब से ले।
0: अच्छा
1: हाँ, बाकी मन और जैसे निकाले ना, वो 100 ग्राम भी दे ले 400 रुपया देवे तो दी। हाँ, ऐसे, लेकिन हमारे ठीक वो सिद्धांत न
0: है।
1: जो रेट है माने
0: रेट है, माने रेट है। सही बात है। हाँ, मौका में काबर अपन
1: ये गलत काम नहीं करना चाहिए कि मौका के फायदा उठाना तो बहुत भारी पाप है। ओकर चलते हमन वो गलत काम नहीं करा।
0: जो पहले ले रेट चलत रही। हाँ, रेट में हमन बेचत रहे।
1: रायगढ़ के थाना में कम से कम 10 आदमी आए डेली सुबह शाम।
0: अच्छा, हाँ,
1: दूध लेबर।
0: हाँ,
2: अच्छा, तो ये बकरी मन के जैसे आओ का उपयोग है, कैसे बेचता है, लाकर का

0: जो देता है वो
1: यार किलो में भी जाते हैं, वैसे मूलियां भी देते हैं।
0: अच्छा,
1: जो किलो कहे 500 रुपया में तोल देबो।
0: अच्छा,
1: और मूलिया में ऐसे बातचीत करके दे देबो। हाँ, जैसे 10,000 कहे तो वो 8,000 ही मांगी, कोई 7,000 ही मांगी, अपना पोसाइस तो दे दे, कोशिश तो रहने दे बाबा।
0: तो जैसे शुरुआत में आप कैसे कर व्यवसाय करे रहा बाबूजी आपके?
1: शुरुआत में हम 5 बकरी लेन।
0: अच्छा,
1: 5 बकरी लेते लेन ना, और बढ़ते बढ़ते ना हमारे 40।
0: अच्छा,
1: हाँ ताले फिर अब बेचक जाथन 80 मन ला, और जो बुढ़िया बकरी हो जाती 16 बेचक जान जी।
0: अच्छा,
1: हाँ ओकर बाद में 93 में शादी हुई ना, तो बकरी सबला बेच देना, फोन चला ही अब इतनी होती खेती बाड़ी देखना है करके, पर साला पैसा के हमला दिक्कत हो जी। अयर का है कभी भी बेचना है तो 2 में बेच देना जी। हाँ,
0: नगद नगद तुरंत पैसा मिलना
1: तुरंत।
0: हाँ, तो बीच में ऐसे कुछ आईस जिकल ले नुकसान हो? हाँ, और फिर तहाले वाला आप उबरा कैसे टाइप के करे है बुताला?
1: तो बकरी सब फिर ओकर बाद फिर दोबारा लाने,
0: तो बीच में जो उतार चढ़ाव हुई फिर ओकर ले कैसे उबरा आप?
1: अब वो फिर खरीदेन बकरी हमन।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: जाना था अब फिर पाले के शुरू करे।
0: अच्छा,
1: एक बार तो घाटा हो जाये, बार बार घाटा नहीं हुए, बोला अचानक घाटा हुआ इसका, तो फिर बकरी चालू करें ना, तो अभी बढ़िया चला चला थे।
0: अच्छा,
1: हाँ इस साल बेचे में खस्सी 80,000 के।
0: 80,000 के, तो यार साल भर के कि दो बार चार बार करके?
1: नहीं, एक ही बार 80,000।
0: एक बार में 80,000 बेचे रहा, बहुत अच्छा। तो एक जो प्रजाति रहते कुछ विशेष प्रजाति के विशेष मांग रहते?
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, है ना जी, बड़े बकराव है।
0: हाँ हाँ,
1: जैसे तोतापुरी है, वो काय काय नाम में नहीं जानो था, वो बकरा मन 70,000-80,000 एक की जाते, मैं तो 25,000-30,000 बेचे।
0: अच्छा,
1: हाँ और वो हर बाहर ले आते वो बकरा।
0: हाँ, तो कुल मिला के जो
1: बकरी में बहुत फायदा है, कोई भी पाले,
0: एक व्यवसाय अच्छा है,
1: बहुत तो। अच्छा, कभी बीमार भी नहीं हुए, ऐसे नहीं कि बीमार होते, बीमार होते जरूर, लेकिन वो सब बीमार नहीं हुए बकरी।
0: अच्छा, और इसमें खर्चा का है? जैसे
1: कोई खर्चा नहीं है,
0: जीरो है,
1: पूरा जीरो है, जो एक आदमी लगे ना वही रोकर खर्चा है,
0: चराए पर,
1: चराए पर।
0: अच्छा,
1: चरा के में ले लाने।
0: हाँ,
1: दाना दियो तो ठीक।
0: हाँ,
1: दियो तो ठीक।
0: हाँ,
1: कोई टेंशन नहीं है,
0: पेट भरे है,
1: पेट भरे है,
0: पानी पियाना है,
1: बस पानी पिलाना है।
0: हाँ,
1: नमक पानी दे दा।
0: हाँ, नमक पानी की क्या विशेषता है?
1: नमक पानी दिया ना तो हजमा शक्ति उनके बढ़ते,
0: पाचन क्रिया, पाचन शक्ति बढ़ते, कहा तो बहुत अच्छा।
1: उसमें कोई चीज मत दे बकरी ला।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: बस चला के ले लाना, घुसा दा, पानी पिला दा, बस होगी, टेंशन दूर,
0: टेंशन फ्री।
1: हाँ, और खिलाहा कही दवाई माटी दुनिया भर के मोटा करिया कही तो बात अलग है, वो तो अपन खर्चा है।
0: तो जीरो खर्चा में अपन ला मुनाफा बहुत ज्यादा है, कहा तो
1: बहुत बहुत बहुत।
0: अच्छा,
1: बहुत ज्यादा है, जब चाहे पैसा जी।
0: अच्छा,
1: हाँ कतको जन तुम चाह तो पैसा है। ये तो 22,000 मांगी से एक खस्सी ला, आगा 20,000 मिले जाबे, कहले 2 नहीं लगे, तुम यहाँ ले रागा नहीं पहुँचे, आके चपले उठा के ले जाइए।
0: अच्छा,
1: जेब में पैसा आ गई, जो काम करे के तुम कर लो,
0: कर लो, ठीक।
1: ओकरे चलते बकरी सूंढे नहीं सका है, जो बकरी के चस्का पैसे
0: नकदी वो है।
1: एक साल तकलीफ रहते बकरी में, जो पहला साल खरीद है ना, वो साल भर तुम नौकर बन के दिया।
0: अच्छा, सेवा जतन करे वाला थे।
1: एक साल नौकर बन का बात, कोई अंगले तुम पेट नहीं भरे,
0: ठीक बात है।
1: बच्चा डाले के चालू कर दे।
0: हाँ,
1: फिर तो हो गया तुम,
0: फिर ओकर बाद नगद है,
1: नगद
0: माने बैंक हो जाते
1: बैंक
0: थे। एक संग में आऊ का है, जैसे मुर्गी उर्गी भी देखा था ना, माने
1: देसी मुर्गी रखे हन, अंडा खाए बस।
0: अच्छा, अंडा खा था
1: अंडा
0: बेचता भी
1: नहीं बेचन जी लोग, लेकिन काल हन
0: गाय भी दिखते है, तो गाय के
1: ये भी 3 दूध दे थे।
0: अच्छा,
1: हा?
0: तो दूध ला बेचता की?
1: नहीं नहीं नहीं,
0: सब खाए बड़े,
1: सब खाए बड़े,
0: बहुत अच्छा। खान जी, देखा आप जो व्यवसाय करा था, यह आर्थिक रूप से वास्तव में आप मन ला समृद्ध करा थे, और आप हमार जो श्रोता है रेडियो श्रोता वाला का संदेश देना चाहा? जैसे कि आप लंबा समय से करत है काम ला, और जो फायदा होते है, तो आप एक का संदेश दी है?
1: मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर आदमी जो गरीब दुखी है वो बकरी पाले।
0: अच्छा,
1: हाँ अब बकरी में इतना फायदा है जो कि कहे नहीं, लेकिन देसी बकरी के नस्ल ज्यादा से कम होते, जरा बड़े साइज के बकरी खरीदे वो अब पाले जी, बस साल भर कम ही रही बकरी की, साल भर बाद में ना अब दूसरा साल ले चालू हो गए बेतन आना।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: अच्छा, एक साल कमियागिरी

0: करना है
1: हाँ, एक साल
0: ताले वो करतन खा चालू हो जाए
1: चालू हो जाए
0: और रुके नहीं है
1: रुकने वाला नहीं।
0: तो खान जी आप बहुत अच्छा जानकारी देवा और स्वाभाविक तौर पे ये काम हर तो बिना खर्चा के और एकर ले आर्थिक समृद्धि हमारे किसान संगवारी मल्ला अच्छा हो सकत है। तो आप तक अच्छा जानकारी देवा कर बार आप पर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहर। तो सुनत रहन भैया हो किसान के बातचीत चर्चा करबो प्रताड़ना के शिकार लोगों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भैया हो सप्ताह के सातों दिन कुछ न कुछ दिवस होते फिर हमन जोन दिवस ला बहुत ज़्यादा प्रचलित रहते ओला तो जानथन लेकिन कुछ ऐसे दिवस घलाव होते जोन हर बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं रहे पर हमन ला ओला जानना घला जरूरी रहते। इसने एक ठन विशेष दिन होते भैया हो प्रताड़ना के शिकार लोगन मन के सहायता बर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भैया हो प्रताड़ना या यातना के शिकार लोग जन के सहायता बर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून यानि आज के दिन मनाए जाते। ये दिन के मुख्य उद्देश्य भैया हो यातना टार्चर के जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाना और दुनिया भर के पीड़ित और सब्बो लोगन मन ला सम्मान और समर्थन देना है। एकर उद्देश्य और महत्व के बारे में यदि चर्चा करबू भैया हो तो प्रताड़ना ला मानवता के खिलाफ एक अपराध के रूप में उजागर करना और ओला पूरा समाप्त करे बर वैश्विक जागरूकता फैलाना हवे। पीड़ित और उमन के परिवार खातिर चिकित्सा मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता पुनर्वास सेवा के वकालत करना है। एकर इतिहास में जाबो भैया हो तो संयुक्त राष्ट्र महासभा हर 12 दिसंबर 1997 में संकल्प 52/149 के माध्यम ले ये दिवस ला मनाए के घोषणा करे गए रही से। 26 जून के तारीख चुने के पिछू दो प्रमुख कारण हावे। 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में हस्ताक्षर करे गए रहीस और दूसरा 26 जून 1987 में प्रताड़ना और आने क्रूर अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन लागू हो रही। तो ये दोनों एकर कारण है और एकर बर जागरूकता के लिए ये दिवस ला मनाए जाते। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भैया हो अहू हर एक दिन है आऊ एकरो कुछ न कुछ विशेषता होते। कहे के मतलब हर दिन के कुछ विशेषता होते ओकर बर हमन का करथन कि जोन चीज ला प्रतिबंधित रहते और प्रतिबंधित रहे के कारण ओला यदि कोई उपयोग करत हैं या ओकर कोई दुरुपयोग करत हैं ओला बेचत हैं तो ओहर अपराध माने जाते। एकर खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते। एकर पहली 26 जून के दिन मनाए जाए वाला एक ठन दिवस के बात हमन अभी करत रहन भैया हो फिर अभी एक दूसर आउट दिवस के चर्चा करबो। यह नशीली दवाओं के उपयोग और औषधि तस्करी के खिलाफ अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भैया हो। यह नशीली दवा मन के दुरुपयोग गलत इस्तेमाल और अवैध नशीली दवा के व्यापार के खिलाफ एक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस हावे। 1989 से 26 जून के दिन हर साल एला मनाया जाते भैया को। 26 जून के तारीख लिन जैक्सन के हुमैन ग्वांगडोंग में अफीम व्यापार ला समाप्त करे के याद में ये दिवस ला मनाया जाते। जोन हर चीन में पहली अफीम युद्ध ले ठीक पहली 25 जून 1939 के समाप्त हो रही। 7 दिसंबर 1987 में महासभा संकल्प द्वारा पालन की स्थापना करे गए रही से। 26 जून 1987 बीपियाना में आयोजित नशीली दवा मन के दुरुपयोग और अवैध तस्करी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लभ्या हो अपनाए गए रही से। ओकर बर तब ले ये जो दिवस है एला मनाए जाते। एकरो उद्देश्य होते कि लोग जन मल्ला जागरूक करना है और जागरूक करके ओ मल्ला एकर जो दुष्प्रभाव है ओ

कर बारे में जानकारी देना है, बताना है, आयकर जो तस्करी रथे ओला रोकना है, ओकर बार हमला जो लोगन है ओमन के सहयोग चाहिए रथे, मदद चाहिए रथे, तो ये चीज़ ला हमला करे बार लागते। और जब हमन आघू आथन कुछ चीज़ बार, लोग जन आघू आते, आम पब्लिक आघू आते, तो वो चीज़ हर बंद हो जाते। ओकर बार जागरूक करे खातिर बार भी ये सब चीज़ के जो विशेष दिन रथे ओला मनाए जाते। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की सहायता के लिए पीएम राहत योजना, भैया हो चलत रहते बहुत सारा योजना, तो सड़क दुर्घटना देखा था रोज दिन हो थे, कभू दिन ऐसे नहीं है जो दिन सड़क दुर्घटना के हमला समाचार सुने पर नहीं मिले। तो सड़क दुर्घटना होते एकर बार सहायता जो होते ओहर पीएम राहत योजना के तहत ओला सहायता दिए जाते। एकर अलग अलग मापदंड तय रथे, वो मापदंड रथे पात्रता रथे, तो ओकर जो FIR के कापी रथे ओकर हिसाब ले ओकर योजना के लाभ हर मिलते। और भैया हो तो कहे के मतलब ये है कि जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित रहते ओकर सहायता के लिए पीएम राहत योजना हर वास्तव में ओला राहत देते। अब अगर संगे संग ये चर्चा के संगे संग जाए कि बेरा घला हो गए, तो अपन रेडियो संगवारी बंशील देव विदा, राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई का कार्यक्रम चौपाल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए सुनवाते हैं आपको पंकज उदास की आवाज़ में नुसरत बद्र की लिखी इस गज़ल को।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: अब गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आइए आज हम आपको सुनवाते हैं सबसे पहले मनहर उदास की आवाज़ में फिल्म आप तो ऐसे न थे का गीत। नुसरत बद के लिखे धमाकी जी का, निदा फाजी के लिखे बोल हैं, संगीत उषा खन्ना का है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: कुमार सानू की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी का ये गीत। समीर के लिखे बोलों को संगीत से संवारा था नदीम श्रवण ने, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे, और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
3: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
2: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए

0: कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे

0: कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग स्यू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launched.
3: में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शमशाद बेगम की आवाज में। नगमा निगार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन और फिल्म का नाम है बहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है जय देव का, फिल्म का नाम है मुझे जीने दो।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है गीता दत्त की आवाज में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना मदन मोहन की। फिल्म का नाम है भाई भाई।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और मुबारक बेगम की आवाजों में वो नख्मा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है हमराही।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है मुगले आजम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी मन्नाडे और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है रोशन की, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।

वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8,500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 वर्ष की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैयाराजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैयाराजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैयाराजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैयाराजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैयाराजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कज़ू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलनथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या शोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

और फिर आई फिल्म शमिताब, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

आ जाए कि जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्ट

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं। देर

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाक, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलियाराजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलियाराजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलियाराजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलियाराजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलियाराजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलियाराजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलियाराजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलियाराजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलिया राजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए सुनते हैं विविध संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए पहले आपको सुनाते हैं अल्ताफ रजा के गाए कुछ गीतों को।

करेगा कौन? इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन?

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्टकार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली,
9: मंगल भवन मंगल हारी।
10: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन, तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा

आजकल ये हाल एक सहमी सी चाह हो जैसे आदमी का है आजकल ये हाल एक सहमी सी चाह।

मैं इस गीत के साथ ही कम अब यही समाप्त होता है। 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 30 मिनट होने को हैं तो ये

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों कार्यक्रम रजनीगंधा। इस कार्यक्रम में आइए पहले हम आपको सुनाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म मन गीत। हम बच्ची के लिखे बोल है संगीत आर डी बर्मन का है।

और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में भी आप सुन रहे थे फिल्म तुम मेरे हो का ये गीत। मधुर के लिखे बोल थे, संगीत आनंद मिलिन का था।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में

0: 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था। और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी। ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली, तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया, तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी। और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में, तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है, यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था। और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है, जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है, उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे। और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे, तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

साथी तेरे नाम एक दिन जीवन जाएंगे। अभी आप सुने थे फिल्म उस्तादी, उस्ताद से फिल्म का गीत भोसले की आवाजों में सवारा था राम लक्ष्मण ने। और इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा यही समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना

183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: conflict. Indian shooters have ended their campaign at the ISSF Junior World Championship in Germany as table toppers with 24 medals, including 7 gold. They performed brilliantly in the pistol and rifle events, bagging 7 gold, 8 silver and 9 bronze, leaving behind the individual neutral athletes who claimed 14 medals and Italy at third position with 10 medals. And that is the end of this news bulletin.
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए, इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण अभी समाप्त होता है। कल प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।